सुप्रभात, ये आकाशवाणी है। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून 2026। सवेरे के 5:56 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सवेरे के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके बाद आप जुड़ेंगे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे।

0: इस दौरान वे कुलता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर झरोखा भी। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 216। 6:45 पर इन दिनों आप सुन रहे हैं संगीत सरिता में श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति है मनीषा जैन की। सुनिए इस श्रृंखला का 11वां भाग। भूले इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी, इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2:00। पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक रूप कुमार राठौड़ पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 सुनिए पिटारा में आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 से तय करेंगे सुरीला सफर। दो पर सदाबहार नगमे। 3 सुनिए सखी सहेली। 4 हेलो फरमाइश। 5 छाया गीत। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7 जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए। निर्देशक इकबाल अली से यूनुस खान की बातचीत का 2रा भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 8 हवा महल में सुनिए नाटिका कटते कगारे। लेखन है चंद्र भारद्वाज का। निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। 10 सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। माफ कीजिएगा, 9 आप सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, फिर 10 आप सुनेंगे छाया गीत कार्यक्रम। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 216।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। ये है इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, बहुत से संगीतकारों की रचनाओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने रिदम पैटर्न के बारे में, ताल जो बज रहा है उसमें अपना कुछ दे करके, जोड़ करके एक नया पैटर्न बनाया है, नया रिदम पैटर्न देखने को मिलता है, वो उस गीत की जरूरत हो। जैसे आर डी बर्मन साहब का एक एल्बम है दिल पड़ोसी है,
2: हाँ।
1: उसमें जो गीत है उसकी झलक पहले सुनते हैं।

0: दिल पड़ोसी है एल्बम से ये जो गाना था गुलजार साहब की रचना है, आशा जी के स्वर में हमने सुनी, और इस रचना में जो ताल बज रहा था वो स्वयं उस गीत के लिए आरडी साहब ने
1: कंपोज किया था
0: या उसे बनाया था, ये कह सकते हैं। ऐसे ही प्रयोग धर्मिता फिल्म संगीत के बारे में भी देखने को मिलती है।
1: बिल्कुल देखने को मिलती है। और देखिए कि फिल्मी गीतों का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य उसी वजह से आया है और वो उस गाने को चिरंजीवी बनाता है।
0: जी जी जी।
1: तो इसमें जब हम लोग ये रिदम पैटर्न की बात करते हैं
0: जी,
1: तब मुझे ये कहना बहुत ज़रूरी लगता है, जैसे संगीतकार होते हैं, अरेंजर होते हैं, तो उसी तरह से फिल्मों में रिदम कंपोज़र भी रहे हैं। अण्णा जोशी, मारुति कीर, भवानी शंकर, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका योगदान है कि जिस वजह से हमको ये इतने अच्छे अच्छे पैटर्न सुनने को मिले हैं। तो ये जो होता है, गाना जब बनता है तब गाने के साथ में उसका रिदम कैसा होना चाहिए, उसका रिदम पैटर्न क्या होना चाहिए
0: जी,
1: ये तय करने वाले ये रिदम के अरेंजर होते हैं। और वो किस वाद्य पे ये पैटर्न अच्छा लगेगा, कौन से वाद्य का उसमें प्रयोग करना उचित होगा, ये वो तय करते हैं।
0: अच्छा।
1: और उस वाद्य के ऊपर फिर वो जब पैटर्न बजता है तब जाकर वो रिदम अच्छा तैयार होता है, बहुत सुनने को अच्छा लगता है। तो रिदम का महत्व इसलिए है कि वो शुरू में ही उसके ऊपर काम किया जाता है, शुरू में ही उसके ऊपर सोचा जाता है कि ये गाने के लिए हम रिदम का पैटर्न किस तरह रखेंगे, इसमें वेरिएशन लाने के लिए कहाँ पर उसको मोड़ देंगे, कहाँ पर उसका वो मोड़ को फिर से और एक मोड़ देकर दूसरी राह पर या जो मूल प्रवाह है उसमें
0: जी,
1: लाएंगे
0: जी।
1: तो मूल प्रवाह से मोड़ लेकर जाना, फिर मूल प्रवाह में आना, ये सारी चीज़ें जो है वो रिदम पैटर्न के लिए वो अरेंजर तय करते हैं। तो ऐसे में देखो, जैसे तबले के साथ में ढोलक बजा, फिर वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ में तबला बजा, तो उसी तरह मल्टीपल आर्टिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कलाकार लेकर हम लोग मतलब एक अच्छा रिदम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ऐसा जब हमारे प्रतिभाशाली संगीतकारों को लगा तो उन्होंने क्या किया कि दो तबले की बजाय और चार पांच तबले, छह तबले, सात तबले ऐसे एक साथ बिठाए,
0: उस रिदम सेक्शन को बढ़ाया,
1: रिदम सेक्शन को बढ़ाया, जबकि मल्टीपल ट्रैक्स है लेकिन हर एक कलाकार जो है उसका बजाने का एक अपना लहजा होता है, उसका उस वाद्य के ऊपर का नियंत्रण अलग होता है। तो इसलिए चार पांच लोग जब एक साथ बजाते हैं तब वो चार ट्रैक एक ही आदमी से बनाने से कुछ अलग होता है। तो इसलिए चार पांच लोगों को बिठाकर एक साथ में एक पैटर्न उनको दिया जाता है और वो पैटर्न वो लोग बजाते हैं
0: जी,
1: और उसमें फिर गाना जब हम लोग सुनते हैं तो जैसे भोर भई पनघट पर मुहे नटखट श्याम सताए,
0: बहुत सुंदर रचना
1: तो
0: है,
1: उसका पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है और तबला भी एक साथ बजा हुआ है।
0: तो क्यों ना इस गीत की झलक सुन ली जाए।
1: बिल्कुल।

0: सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओं। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रविंद्र जी, इस विश्व की, इस दुनिया की एक लयबद्धता है
1: जी,
0: ऐसे ही हमारे जीवन के, सभी के जीवन की अलग अलग लय है। एक विशिष्ट लय में हम सब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कला के साथ, संगीत के साथ कैसे इसे जोड़ करके और समृद्ध किया जा सकता है?
1: जी, हमने इस पूरी श्रृंखला में ताल के बारे में बात की है
0: जी,
1: तो अब जब इसका समापन करने जा रहे हैं तो जीवन का और ताल का कैसे संबंध है उसके बारे में बात करके मैं मेरी बात पूरी करना चाहूँगा
0: जी।
1: पूरी सृष्टि जो है उसमें एक ताल है। ये ताल जो होता है वो ताल, जैसे सूरज का रोज सुबह आना, शाम को सूरज का ढलना
0: जी,
1: फिर दूसरे दिन सुबह आना, तो ये एक प्रकार का चक्र है, ताल चक्र जिसे हम कहते हैं
0: जी।
1: सम है, काल है, फिर सम आई, फिर काल आया। तो उस तरह जीवन में हर जगह, मतलब सृष्टि में तो हर जगह आपको ताल खिलता हुआ दिखेगा। जैसे पृथ्वी जो है वो सूरज के
0: इर्द गिर्द चक्कर लगाती है,
1: तो उसमें भी एक ताल है
0: जी।
1: पूरे सृष्टि में जब अगर झरने से पानी बह रहा है तो उसकी एक मधुर नाद आती है, सुनाई देती है, उसमें भी एक ताल होता है
0: जी।
1: तो ऐसे हर जगह पर हमारा जो जीवन है वो पूरा तालमय है। घड़ी की टिक टिक जिस समय के साथ में हम लोग चलते हैं
0: जी जी,
1: वो भी एक ताल दर्शाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हृदय जो है
0: जी,
1: वो भी एक ताल में चल रहा है, और जब तक ये ताल हमारा सही चलता है तब तक हमारा जीवन भी सही चल रहा है। इसलिए हम लोग जो है ना शब्द प्रयोग करते हैं कि तालमेल बनाए रखो
0: जी। हाँ जी,
1: तो तालमेल जो है ये मेल होना ज़रूरी है ताल का जीवन में, और वो मेल अगर अच्छे से होता है तो पूरा जीवन हमारा अच्छा होता है।
0: क्या बात है।
1: मैं अपने इस कार्यक्रम का समापन स्वर सम्राज्ञी लता दीदी, जिनके गले में हम लोग कहते हैं कि माँ शारदा बसी है
0: जी,
1: और जिनका गाना जो है वो अपने आप में एक ताल है। मतलब जैसे हमने कहा शुरू में कि सुर और ताल ये संगीत की बुनियाद है
0: जी,
1: और उसका मिलाप जिसमें बहुत अच्छे से होता है वो हमें सबसे ज़्यादा कर्णप्रिय लगता है, सबसे ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो लता दीदी का गाना हमें इसलिए अच्छा लगता है कि सुर और ताल इसका जो मेल उनमें है वो देखते देखते खुशी से जीवन भर जाता है
0: जी जी। तो श्रोताओं को भेंट करने के लिए लता जी के स्वर में वो कौन सा गीत है?
1: पलकों की छाँव में, इस फिल्म का, कोई मेरे माथे की बिंदिया।
0: वाह वाह, बहुत सुंदर गीत है और एक निराला ही ढंग है इसमें ताल का, और वो प्रयोग धर्मिता की जो हम बात कर रहे थे
1: हाँ,
0: वो यहाँ हमें दिखाई देती है। आइए सुनते हैं यही गीत।

0: पलकों की छाओ में। इस फिल्म से लता जी के स्वर में ये सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ सिने संगीत में तबले का दौर, ये श्रृंखला अब समाप्त होती है। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे आकाशवाणी के अश्रेणी संगीत रचनाकार, आकाशवाणी के ही आत्मीय श्री रविंद्र खासनीस जी। रविंद्र जी, विविध भारती के सुनने वालों की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से हम आपके हृदय से आभारी हैं।
1: जी धन्यवाद।
2: सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती, वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली। प्रायोजक हैं देवदर्शन।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आवारा फिल्म के इस गाने के साथ, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे अलबेला फिल्म से ये गाना। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत सी रामचंद्र का।

0: बाजी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना गीता दत्त की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: सुलोचना कदम की आवाज में आप सुन रहे थे ढोलक फिल्म से ये गाना श्याम सुंदर का संगीत। कार्यक्रम के बाकी गाने संतराल के बाद।
1: पता है न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: सुरैया की आवाज में नरेंद्र शर्मा के बोल संगीत है सचिन देव बर्मन का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप नौजवान फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: इस संदेश के पहले आप सुन रही थी सजा फिल्म का गाना। संध्या मुखर्जी, हेमंत कुमार की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही देर में।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गाना है खेल खेल में, इस फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गुलशन बाबरा के बोल, संगीत है राहुल देव परमा।

गीता और गीता इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे लाखों में एक, इस फिल्म से ये गाना। आनंद बख्शी के बोल, संगीत राहुल देव बर्मन का। कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अगला गाना सुनते हैं मौसम फिल्म से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गुलजार की बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म से। मुकेश और कंचन की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अपने रंग हजार इस फिल्म से, किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अनजान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में

0: से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
2: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
3: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
3: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति

0: सकती हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने

0: की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिमी एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
3: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है, उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल। थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

खेल हमारे नज़रिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।
1: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
2: पर भैया, ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
1: तुमने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
2: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
3: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
4: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
5: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
6: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के

0: माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
3: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
4: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली। प्रायोजक हैं देवदर्शन।

0: ओके जानू फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना ए आर रहमान श्रीनिधि वेंकटेश की आवाज़ों में, गुलजार के बोल और म्यूजिक ए आर रहमान का। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियाँ भी नहीं देख सकती है वो सपना भारत की बेटियाँ साकार कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना डंकी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में, स्वानंद किरकिरे के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

बच्चों के हैं तीन काम, खेल कूद, पढ़ाई और आराम। इनमें से सबसे जरूरी हमेशा रहेगा खेल कूद का काम। पसीने में लथपथ, पार्क के एक कोने से दूसरे कोने तक की जोर की दौड़, थकान के बावजूद सबसे ऊंची आवाज लगाएगा कौन? बच्चों के यही खेल कूद की तो बातें हैं जो उन्हें बनाती हैं मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग।

बच्चों की इस खलबली को आप सुन रहे थे भूतनाथ फिल्म से। कौस्तव घोष, अपर्णा भागवत, भारवन सुरेश और स्नेहा सुरेश की आवाज़ों में, जावेद अख्तर के बोल, म्यूज़िक विशाल शेखर का। इस खलबली को जारी रखते हैं इस अगले गाने के साथ। इंटरनेशनल प्ले डे पे जारी है बच्चों की खलबली।

0: चिल्लर पार्टी इस फिल्म से सुन रहे थे आप। ये गाना अमित त्रिवेदी, जयश्री त्रिवेदी की आवाजों में, नितेश तिवारी और अमित त्रिवेदी के बोल और म्यूजिक अमित त्रिवेदी का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रम। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 100.3 MHz पर। सवेरे के 9 बजने को हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर, आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और NDA ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
6: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
5: उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। श्री शर्मा कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रामजल सेतु लिंक, यमुना जल समझौता, जयपुर मेट्रो फेज 2 और रिफाइनरी जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं से राजस्थान में विकास का नया युग शुरू हुआ है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश में विभिन्न वर्गों को मिल रहा है। पाली के रहने वाले किसान रामचंद्र ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम बी योजना के तहत 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। इससे बिजली की बचत होने के साथ ही खेती में लागत भी कम हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
7: भारत सरकार की जो वाटरशेड की स्कीम है उसके तहत मैंने एक डिक्की बनवाई, उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री कुसुम की योजना के तहत ये 5 किलोवाट का सोलर लिया जिसकी लागत 3,05,000 है, लेकिन सरकार किसानों को मात्र 1,30,000 उपलब्ध करा रही है। इस योजना के लाभ से ये कृषि कार्य में सुगमता आने लगी है एवं खेती की लागत में बहुत कमी आ गई। और सरकार ने जो ये सराहनीय कार्य किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
5: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर हैं। वे अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं। ये राज्य की 94% क्षेत्र को कवर करते हैं और 99% आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच है। कार्यक्रम के बाद श्री वैष्णव MNIT जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित के कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आग जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना है। इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, बिजली व्यवस्था, वातानुकूलन, आपातकालीन निकास, फायर फाइटिंग सिस्टम और पानी की उपलब्धता सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा इंतजामों की गहन जांच की जाएगी। स्टेशनों की जांच के लिए रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर राज्य अग्निशमन विभाग और विशेषज्ञ एजेंसियों का सहयोग भी लिया जाएगा। ऑडिट के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से आकलन किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। इनमें अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में 14 जून तक तेज आंधी और बारिश का दौर बना रह सकता है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विशेष तौर पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी और उमस का असर लगातार बना हुआ है। कल श्रीगंगानगर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि 19 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के पहले चरण की सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार को देखते हुए ये फैसला किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में ये सुधार दर्ज किया गया है। ग्रैप से जुड़ी उपसमिति प्रदूषण की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है और भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार आगे के आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। डाक विभाग ने युवाओं और छोटे व्यापारियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइजी योजना 2.0 शुरू की है। पाली डाक विभाग के अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, पिकअप और डिलीवरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस और ट्रैक्ड पैकेज सर्विस की बुकिंग का भी काम होगा।
8: इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट या पार्सल बुकिंग, पिकअप, कलेक्शन और पार्सल डिलीवरी, इंटरनेशनल ईएमएस, ईएमआई तथा इंटरनेशनल ट्रैक पैकेज सर्विस जैसी सेवाओं की बुकिंग की जा सकेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं में आमजन की भागीदारी बढ़ाना है, ई कॉमर्स क्षेत्र में डाक विभाग की पहुंच मजबूत करना है और रोजगार के अवसर देना है। पाली के युवा और देश के युवा, राज्य के युवा अधिक से अधिक इस योजना से जुड़े और डाक विभाग में अपनी भागीदारी भी बढ़ाएं और रोजगार के अवसर भी डाक विभाग के माध्यम से प्राप्त करें।
5: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर। आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा। और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रोग्राम एफएम रेडियो पिंक सिटी।

0: गुरुवार होता है सबसे निराला, जब खुलता है इंफोटेनमेंट का पिटारा और होती है एक खास मुलाकात खुद जयपुर की अपने जयपुर के साथ। जयपुर के साथ सारे तेवर और सारे फ्लेवर। इट्स नाउ देन एंड फॉरएवर। ट्यून करिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: 9:12 और पूरे 10:11-12 सेकेंड्स रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम गुलाबी नगरी की गुलाबी पहचान जहां 11 जून गुरुवार के सुबह में आपके साथ मैं हूं। बोले तो आज ब्रिटिश मेरी जान। नमस्कार, खम्मा घनी, सस्त्री काल और पूरे 12 बजे तक आप और हम रहने वाले हैं नाल। वेल, होगा मेलोडीज का संग और साथ ही चढ़े लो अपनी बोली लो भी रंग। तो साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम और गुड मॉर्निंग्स के साथ कहेंगे यही कि एक लफ्ज़े मोहब्बत का इतना सा फसाना है, एक लफ्ज़े मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो ज़माना है। और रेडियो पिंक सिटी की मोहब्बत का फसाना आप सभी के दिलों तक फैला है जाने जाना। सो साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम और गुरुवार की सुबह की शुरुआत झूमते गाते नाचते गाते। आशा ताई की एवरग्रीन सी आवाज, सुबह का मूड, उसे देगी एक खास परवाज।

0: कुछ कहता है जयपुर, क्या कहता है जयपुर।
1: मैं अल्बर्ट हॉल हूँ। सन 1876 था वो साल जब पूर्व महाराजा राम सिंह जी ने ब्रिटेन के महाराजा एडवर्ड सप्तम के स्वागत के लिए बनवाया था मुझे। मेरा हमनाम एक और है, अल्बर्ट हॉल नाम से ही सात समंदर पार है लंदन में। लेकिन मेरी बात तो कुछ और ही है क्योंकि मैं तो दुनिया की वो इकलौती इमारत हूँ जिसको कई मुल्कों की स्थापत्य शैलियों को मिलाकर बनाया गया है। करीब 300 साल पहले की बात है, उस वक्त मुझे बनाने में 4 लाख रुपए खर्च हुए थे और मेरे आर्किटेक्ट सर जैकब ने भारतीय और फारसी कारीगरों की राय लेकर मेरा डिजाइन तैयार करवाया। अगर राजस्थान को करीब से जानना है तो आओ ना, झांको मुझमें, क्या नहीं है मेरे जादुई पिटारे में। अमीरों के बेशकीमती कपड़े, गहने, हर जाति के परिधान और वो हथियार जिन्होंने जीते जंग के मैदान, और हाँ, टालमी जमाने की एक मिस्र की ममी भी संजो कर रखी है मैंने। लेकिन सबसे कीमती तो वो कालीन है जिसे अरब के शाह को मुंह मांगी कीमत देकर खुद सवाई जयसिंह जी ने खरीदा था। देखना चाहते हो भाई? शुक्रवार को छोड़कर हर रोज मिलता हूँ मैं। अनजान के लिए तो सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत हूँ, लेकिन जानने वालों के लिए अनमोल हूँ, विरासत की खुली तिजोरी, जयपुर का अल्बर्ट हॉल हूँ।
0: 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। म्यूजिकल सफर में रहिए हमारे साथ, आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: फीकी सी भागी सी मेरी आंखों की सियाही देती है गवाही, और ये आंखों की सियाही और गहराने वाली है बाबू।
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

सकता, टाइम मैनेजमेंट, सबका एक ऐसा कॉम्बो है ना। तो बस आज से ये हो रहा है शुरू। बहुत सारी टीम्स हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, और टूर्नामेंट में बात करें तो टोटल 48 टीम्स हैं, और दशकों से खेल की दुनिया पर राज करने वाले बहुत सारे महान खिलाड़ियों का ये लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हो सकता है, जैसे लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल, एंड यू नो अगर 41 की एज में होपफुली अगर रोनाल्डो ट्रॉफी उठाते हैं, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी, तो ये ट्रॉफी उठाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी वे बन सकते हैं। मैनुअल नेउर जर्मनी, लुका मॉड्रिच क्रोएशिया, नेमा फ्रॉम ब्राज़ील, केविन ब्रुएन बेल्जियम, ये वो खिलाड़ी हैं जो दशकों से फुटबॉल फील्ड पर अपनी चमक बिखेर रहे हैं, और इनके हम क्या दुनिया भर में इतने फैंस हैं। वहीं एक तरफ दुनिया भर के कई अंडर 21 प्लेयर्स भी अपनी चमक बिखेरने के लिए इस फीफा वर्ल्ड कप में तैयार हैं। यूरोप के स्थापित सुपरस्टार्स भी हैं, और घरेलू स्तर के उभरते हुए जादूगर, बहुत सारे सितारे जिनमें खास नाम शामिल है, लामिने यमाल फ्रॉम स्पेन, जुआओ नेवेस पोर्चुगल, डेसिरे डोए फ्रेंस, केनान यिल्डिज तुर्की, एंड्रिक फ्रॉम ब्राज़ील। तो इन सबको देखना और रोमांच और रफ्तार के इस सफर पे जाना, आई थिंक ये सब कुछ बहुत बहुत बेहतरीन होने वाला है। और 19 जुलाई तक हम सब अपनी सीट बेल्ट यानी कि पेटियां बांध बांध के रखेंगे, बिकॉज वो जो रोमांच होता है ना, क्योंकि एक एक वो जो सेकेंड होता है इट्स सो इम्पॉर्टेंट। और जो भी फुटबॉल लवर्स हैं, मुझे पता है वो मेरी इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे। टोटल 39 दिन तक ये टूर्नामेंट चलेगा, 104 मैचेस खेले जाएंगे। सो गेट सेट गो, एंड जो प्लेयर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, छलांग, एक लंबी सी छलांग, और आगे बताऊंगी एक खास कनेक्शन आज के दिन का फीफा से।

0: और एक लंबी छलांग जिसके लिए तैयार हैं बहुत सारे देश, बहुत सारी टीम्स फॉर दिस फीफा वर्ल्ड कप।
1: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय, हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
3: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
2: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: The station with the best music. Best music.
7: I love the music. Love the music.
8: Best music.
9: We rock when we are together. Hey Jaipur, saath rahe, sunte rahe. Radio Pink City 100.3 FM.
0: और बहुत सारी टीम्स हैं जो रॉक करने के लिए तैयार हैं। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना, जिस पर सबकी नज़र है, दो बार की विजेता फ्रांस, विनर स्पेन। और वेल, देखिए, स्पेन की जब बात करें तो आज की तारीख से फीफा का एक खास कनेक्शन आप सभी को बता दें। 2010 फीफा वर्ल्ड कप जो पहली बार साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, सेम डे यानी कि साल था 2010, लेकिन सेम डे यानी कि 11 जून से ही उसकी शुरुआत हुई थी। एंड इन दैट ईयर इन 2010 स्पेन वॉज चैम्पियन। और अभी देखते हैं कि कौन होगा चैम्पियन, लेकिन रफ्तार और रोमांच के इस खेल के दीवाने हम सब हैं।

0: Weekly morning chit chat only on 100.3 FM Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, 11 जून गुरुवार की सुबह. और बात करें अगर कि आज क्या कहने वाले हैं पारा बाबू, तो बस बिना धड़कनों को करे बेकाबू. जरा सुनिए.
2: मैं निकला वो गड्डी लेके.
3: पारा सिंह की गड्डी कहाँ होगी फास्ट और कहाँ होगी स्लो. Temperature update. Only on 100.3 FM. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: तो देखिए भाई, खास बात ये है कि जिस तरह से इन समर वेकेशंस में आप लोग दिन भर मचाते हैं धमाचौकड़ी, और मम्मी का जो पारा है वो हाई रहता है, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से पारा बाबू का पारा भी बड़ा हाई है. भाई देखिए, आंधी बारिश का अलर्ट चलता रहता है, मम्मी का भी मूड है, ठीक है, कभी कभी प्यार आ जाता है, ऐसे पारा बाबू भी पलटी मार लेते हैं. लेकिन एक्सेसिव हीट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपको रखना है अपना पूरा ध्यान. और आगे देखिए, है ये कि मानसून जो है वो कहा जा रहा है कि जल्द पूरे देश को कवर करेगा एक्सेप्ट राजस्थान और गुजरात. ये दो चीज़ तो है, लेकिन उसके अलावा जो मौसम वाणी है वो ये कहती है. देखिए क्या होता था, पहले बारिश होती थी, रिमझिम रिमझिम रिमझिम, वो जो बरखा होती थी धीरे धीरे से आती थी, सौंधी सौंधी मिट्टी की जो खुशबू है वो मन को महकाती थी, है ना, पूरा पूरा दिन. और ऐसा लगता था वो जो बारिश होती थी वो धीरे धीरे धरती की भी प्यास बुझाती थी और मन का मयूर सच में नाच उठता था. आजकल अगर बारिश आती है तो ऐसा होता है कि कुछ घंटों में भयंकर वाली भारी सी बारिश आती है, और उसके बाद एक लंबा दौर चलता है जब बिल्कुल सूखा होता है. और अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये मौसम को क्या हुआ है, सो द क्रेडिट गोज टू अस ओनली, इस सब के जिम्मेदार हम सब हैं. क्योंकि देखिए, हो ये रहा है जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और उस सब में हम सब अपना पूरा पूरा योगदान, पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. मौसम के जो प्रणालियां हैं, मौसम तंत्र हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं. तो अब ये है कि कम समय में बहुत बारिश हो रही है, लंबे समय तक बारिश नहीं हो रही है, और जो मौसम जिस मुफीद है, मतलब हम बरसों से जिसके आदि हैं.

0: कि हाँ इस मौसम में बारिश होती है, इस मौसम में थोड़ा गर्मी पड़ेगी, अभी ना लू चलेंगी, आंधियाँ चलेंगी, इस वक्त ना बहुत ज़्यादा ठंड होगी, वो सब एकदम से चेंज हो गया। हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो व्यवहार है वो कुछ कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब हम लोगों ने ये समझ लिया है कि अर्थ पे जो कुछ हम बना रहे हैं, देखिए मैनमेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज है ना, प्राकृतिक संसाधनों में फ़र्क है, उनकी एक सीमा है। प्रकृति जो दे रही है, पृथ्वी जो हमें दे रही है, वो संसाधन सीमित हैं और उन पर सभी का अधिकार है। तो हम उन्हें अगर ये सोचकर इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो हमेशा चलेंगे, हम उन्हें बना पाएंगे, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। और शायद इसी वजह से मौसम की ये जो सारी उल्टी पुल्टी सी रफ्तारें हैं, ये इसके पीछे हैं। सो वी ऑल नीड टू थिंक, और अभी के लिए कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। फ्रॉम द मूवी कल हो ना हो, साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। और आगे बताऊंगी आज के दिन से जुड़ी एक बेहद खास शख्स की बात।
1: कुछ खूबसूरत सुरीले पल ओनली फॉर जयपुराइट्स विद

इस गाने में किशोर दा की आवाज और ये गिटार, मतलब सच में सुबह के वक्त भी ऐसा लगता है कि रात हुई है और चांद आसमान में चमक रहा है।

0: कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं ना कि कभी भी सुन लो, किसी भी मूड में सुन लो, लेकिन ऐसा लगता है कि बस एक एक स्टार्ट मिल गया, एंड दिस सॉन्ग इज वन ऑफ देम।
1: आप हैं आरजे प्रीति के साथ, प्रीति के साथ ओनली ऑन 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: लवली मॉर्निंग चिट चैट Only on 100.3 FM, Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
0: 9:53 और पूरे 58 सेकेंड, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, 11 जून की यह सुबह। और 11 जून की अगर बात करूं तो आज 11 जून साल 1897, आज ही के दिन जन्म हुआ महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी। आप क्रांतिकारी ही नहीं थे, आप एक उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक और साहित्यकार भी थे। बिस्मिल जी की रचना सरफरोशी की तमन्ना, इसे गाते हुए ना जाने कितने ही शहीद हो गए देश की आज़ादी के लिए, हंसते हंसते वे फांसी के फंदे पर चढ़ गए। काकोरी कांड में मुकदमे के बाद 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन आजीवन हम ऋणी रहेंगे उनके। और वैसे अगर कहूं कि इन महान शहीदों के बलिदान को ना तो हम शब्दों में बयां कर सकते हैं और ना आजीवन उनका कर्ज उतार सकते हैं। इस आज़ाद देश में स्वतंत्रता की ये जो साहसी हैं, ये हम सभी की जो सांसें हैं, ये इन शहीदों की कर्जदार हैं। और अगर मैं कहूं कि हम क्या कर रहे हैं, साफ स्वच्छ तरक्की की राह पर जाते भारत में अगर हम देखें तो सड़कों पर कहीं कूड़ा पड़ा है, अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो एक देशवासी के रूप में भी हम सब में हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये वो आज़ाद भारत है जिसकी परिकल्पना उन लोगों ने की होगी। नमन है इन शहीदों को और उम्मीद करते हैं कि हम उनका कर्ज चुकाने के लिए एक बेहतर नागरिक बन सकेंगे और शान से इस तिरंगे को ऊंचा रखने में अपना पूरा योगदान देंगे।

0: मुस्कुराहटों की मीठी खुशबू ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
1: जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, ऐ खुशी।
2: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
3: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
2: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
3: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
4: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
5: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
6: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
7: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जयपुर की है जान,
3: ओ मेरी जान।
2: जयपुर की है मुस्कान,
3: मुस्कुराने की वजह तुम हो।
2: आप सभी के दिलों में बसने वाला चैनल 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, ये रिश्ता है हमारी शान।

0: गुरुवार होता है सबसे निराला, जब खुलता है इंफोटेनमेंट का पिटारा और होती है एक खास मुलाकात खुद जयपुर की अपने जयपुर के साथ। जयपुर के साथ सारे तेवर और सारे फ्लेवर। इट्स नाउ देन एंड फॉरएवर। ट्यून करिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: 10:03 और पूरे 2-3 सेकेंड रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। 11 जून गुरुवार की ये सुबह, और गुरुवार की सुबह होती है 10 बजे से कुछ ज़्यादा ही खास। एक अलग ही होता है रंग, क्योंकि कुछ खास मेलेडीज होती है संग। कित्थे ऐथे जनाब।
2: मेलेडी क्वेस्ट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट। और वेल, मेलेडीज की होती है बात, सभी के चेहरे पर सजती है एक खास मुस्कुराहट। चलिए, मेलेडीज को प्ले करने से पहले थीम जानना बहुत ज़रूरी होता है, और थीम से पहले हम बात करते हैं हमारी भाषा यानी हमारी लैंग्वेज की। अब देखिए क्या होता है कि जब हम लोग कहते हैं ना कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, कल्चरल जो एक्सचेंजेस होते हैं, आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, आप एक जगह से राज्यों में भी जाते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ अपनाते हैं, बहुत कुछ वहाँ पर सिखा कर भी आते हैं। और मुझे लगता है ये जो एक्सचेंजेस होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सचेंज होता है दैट इज़ द वर्बल, यानी कि भाषा। बहुत सारी भाषाओं के शब्द जो हैं वो हमारी हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है आज की जनरेशन में, आज के टाइम पे घुले मिले हैं, वो है इंग्लिश वाले वर्ड्स, यानी कि हिंग्लिश जो है वो हमारी भाषा हो चुकी है। जैसे कि मैं आप सबसे बोलूं गुड मॉर्निंग्स, लेकिन सुप्रभात बोलते हुए आप कितने लोगों को देखते हैं। इसी तरह से, अरे मुझे लेट हो रहा है, आप मेरा वेट मत करना, आई एम सॉरी, गुड मॉर्निंग, अरे आई डोंट नो, हाउ आर यू। लेकिन ये आप जब पूछते हैं, मैक्सिमम हम यही पूछते हैं ना, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। लेकिन हम अपनी उसमें हजन में और की हाल चाल है, ये कम पूछा जाता है। सो देखिए क्या होता है कि कुछ कुछ छोटे छोटे से जो शब्द होते हैं ना, वो इतने घुल मिल गए हैं कि एकाएक ये ध्यान ही नहीं आता है कि अच्छा ये तो दूसरी लैंग्वेज के, ये तो हमारी हिंदी के हैं ही नहीं। और इन्हें ही कुछ ऐसा घुलाया मिला है कुछ एक वर्ड्स को, मतलब एक एक लाइन, कभी दो तीन वर्ड्स किसी किसी बॉलीवुड सॉन्ग में, और उस गाने को एक अलग ही मोड, एक अलग ही ट्विस्ट दे दिया है। तो आज हम लेंगे बॉलीवुड के वो हिंदी गाने जिनमें कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं हिंदी के। अब वो बहुत सिंपल सा हो सकता है, जैसे आई डोंट नो, आई एम सॉरी, ठीक है, इतने बहुत सिंपल सिंपल से जो वर्ड्स होते हैं। जैसे कि शाहरुख का जो गाना है प्रिटी वुमन, तो अब प्रिटी एंड वुमन दे बोथ, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, लेकिन पूरा गाना हिंदी में है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लेंगे वो हिंदी वाले गाने, वो बॉलीवुड सॉन्ग जिनमें इंग्लिश के कुछ कुछ वर्ड्स, यानी कि कुछ कुछ वर्ड्स आए हैं, और गाने को एक अलग ही ट्विस्ट मिल गया है। एक गाना बिल्कुल जी हम आप सबके लिए प्ले करेंगे, और उस गाने में हिंदी इंग्लिश को इस तरह से मिलाया, जो सॉन्ग मैं प्ले करूंगी, चलिए उसके ऊपर एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको थीम समझ में आए। जो गाना मैं प्ले करूंगी डैट इज़ फ्रॉम द मूवी मैं और मिसेस खन्ना, उसमें है डोंट से अलविदा। तो डोंट और से ये दोनों इंग्लिश वर्ड है, लेकिन अलविदा हिंदी वर्ड है। तो इसी तरह से इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके जो

गाने हैं वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सो वेल, करना क्या है मेरे जयपुर, लगाना है कान और ध्यान। तो कान और ध्यान लगाइए और सुनिए आज का पहला क्लू। एंड आई थिंक पहला जो क्लू है ये बड़ा इजी आप सभी के लिए होने वाला है। इंग्लिश के जो हैं कुछ वर्ड्स भी इस गाने में आएंगे, वो बाद में भी आ सकते हैं, वो शुरू में भी आ सकते हैं, राइट? सो देयर इज नो सच, मतलब इस तरह की कोई बंदिश नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इंग्लिश वर्ड्स उस गाने में आएंगे। इंग्लिश और हिंदी मिक्स वाला ये गाना, मैक्सिमम गाना हिंदी में होगा, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होंगे। सबसे पहला गाना जो आपको है मुझे बताना, वो पिक्चराइज्ड है कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर पर। कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर पर पिक्चराइज्ड ये हिंदी सॉन्ग जिसमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स आते हैं, आपको है मुझे बताना। और बताने के लिए जाने जाना आपके पास हमारी फ़ोन लाइंस 2200 8000, और इसके अलावा हमारा एफबी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। इस पेज पर जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है, यानी कि वो पोस्ट जिस पर मेलोडी क्वेस्ट ये जो प्रोग्राम अभी जा रहा है इसकी तमाम डिटेल्स हैं, वहाँ जाइए और उस पोस्ट पर जाकर कमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों हमें लिखकर भेज दीजिए। तो आपको बताना है वो गाना जो है हिंदी का पूरा, लेकिन उसमें कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हैं और वो पिक्चराइज्ड है कैटरीना कैफ एंड रणबीर कपूर पर।

बिल्कुल जी, हम आपको अलविदा कहने नहीं, आपके साथ मेलोडीज का खूबसूरत सा खेल खेलने आए हैं। वेलकम टू द शो मेलोडी क्वेस्ट। और आज मेलोडी क्वेस्ट में है एक बड़ा ट्विस्ट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश के तो, और बहुत सारे ऐसे गाने कैसे पहचानेंगे। वैसे देखिए, क्लूज जो हैं वो बड़े क्लियरली आपको दिए जाते हैं, और जब तक दिमाग के घोड़े दौड़ाए ना जाए तब तक किसी भी खेल का मज़ा नहीं है, राइट? सो वेल, हमने आपसे पूछा था कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स वाला गाना जो पिक्चराइज्ड है कैटरीना कैफ एंड रणबीर कपूर पर, एंड द सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी, तेरा होने लगा हूँ। तो ये गाना जिन्होंने है सही सही पहचाना, उसमें नाम शामिल है अनु, अलीशा, आस्था, प्रिया, छवि, कशिश, वंशिका, अनुष्का, पायल और सीटू सैनी जी चौमू शहर से, मधु टहलियानी जी ओवर द राइट आंसर, सुशीला दत्ता फ्रॉम बनीपार, हनी भाटिया, मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा सुशांत सिटी से, और नवीन बंसल विद द राइट आंसर, शशि बेनीवाल जी फ्रॉम नाड़ी का फाटक, अजहर अहमद एंड अमन, अजहर अमन एंड आसिफ फ्रॉम फतेहपुर शेखावाटी, पुष्पा दिल्लीवाल एंड पायल जी फ्रॉम सोडाला, वेल अशोक कनौजिया जी त्रिवेणी नगर से, और अशोक जी ने भी वैसे अगर हम देखें तो देखिए जवाब सही है, क्योंकि मिस्टेक जो है कर ले गलती से, मिस्टेक इंग्लिश वर्ड तो इसमें है, बट वैसे अगर हम देखें तो जो राइट आंसर होगा दैट इज तेरा होने लगा हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉपर इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आते हैं, शाइनिंग इन द एयर। वेल, समझ गए होंगे आप सभी लोग। और पंकज अरोड़ा जी फ्रॉम जनता स्टोर, प्रवीण चौहान जी विद द राइट आंसर, मोहम्मद अल्फेज ने दिया सही जवाब, रविंद्र पटनायक विद द राइट आंसर, एंड सुनीता झालानी जी कहती हैं कि थीम कहाँ से लेकर आते हो आप इतनी गजब गजब की, थैंक यू सो मच जी। एंड सुनीता झालानी जी ने भी दिया है बिल्कुल सही सही जवाब, राज छीपा, गोविंद सैनी, पवन सैनी, लोकेश, मोनू, प्रतीक, नाहरगढ़ किड़े के नीचे से, नरेश राज विद द राइट आंसर, और यस प्रीति नितिन अग्रवाल मालवी नगर से, और सही जवाब देने वालों में आई थिंक यही नाम है जो एफपी पेज पर अभी तक हमें दिखे हैं। एंड यस, फोन लाइंस के जरिए जो हमसे जुड़े हैं वो हैं विनोद दायमा जोबनेर से, एंड अमित कुमार नामा नरसिंह कॉलोनी से, अंकित विवेक विहार सोडाला से, संगीता अग्रवाल जी गुजर की थड़ी से, और संगीता जी ने भी गलती से मिस्टेक जग्गा जासूस वाला गाना बताया, एंड अशोक कनौजिया जी सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं, देखिए क्योंकि इंग्लिश वर्ड इसमें है ही तो हमने इंग्लिश जो वर्ड्स हैं वही थीम दी है, बट हाँ प्रॉपर जो फिट होता है वो है अजब प्रेम की गजब कहानी। और सही जवाब देने वालों में हैं रविंद्र पटनायक, करतार सिंह जी, शंकर जैन फ्रॉम जौहरी बाजार, रईस एंड जाइदा बानो, किरण शर्मा मानसरोवर से, गजानन मेघवाल जी, नदीम कुरैशी फ्रॉम सोडाला, रेखा कोहली जी बैनार्ड रोड से, ज्योति जी चित्रकूट से, मोहम्मद शाहरुख फ्रॉम विद्याधर नगर, हरीश जी बाईस गोदाम से जुड़े हैं सही जवाब के साथ, महक गुलाटी विद द राइट आंसर, राधा देवी, इंदर कुलकर्णी एंड श्यामला कुलकर्णी, वैष्णवी विद द राइट आंसर, हेमलता जांगिड़ जी का जवाब बिल्कुल ठीक, एंड चमन गहलोत। तो यही लोग

लोग हैं जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है, और अभी भी अगर किसी का नाम रह जाएगा तो बिल्कुल जनाब, हम आपका नाम ज़रूर शामिल करेंगे। और अभी आपको जिसको शामिल करना है गेम में वो है कान और ध्यान, क्योंकि कान और ध्यान दोनों लगाकर आपको सुनने हैं क्लूज़। अब देखिए, थीम आप सभी को समझ में आ गई है, क्योंकि गाने जो हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, हिंदी सॉन्ग्स हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश के आ रहे हैं। अब ऐसा ही एक गाना आपको है मुझे बताना, जो पिक्चराइज्ड है दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी पर। दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी पर पिक्चराइज्ड एक इंग्लिश वाला गाना आपको है मुझे बताना। और बताने के लिए जाने जाना आपके पास है हमारी फोन लाइंस 2200800। इसके अलावा हमारे वेब पेज है ना, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस पेज पर जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर कमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों हमें लिखकर भेज दीजिए।

रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट। और मेलेडी क्वेस्ट में अभी गाना आपने सुना फ्रॉम द मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी। और ये गाना जिन्होंने सही पहचाना उसमें कौशल कुमार जी बुधवाड़ा अजमेर से आपका नाम भी शामिल होता है। तो अब हमें आपका नाम दिखा है, सो नाउ वी आर टेकिंग इट। और अब वो लोग जिन्होंने दिया है सही सही जवाब, हमने आपसे पूछा था दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी पर पिक्चराइज्ड वो गाना जो हिंग्लिश वाला है। सो वेल, देखिए हिंग्लिश वाले जो गाने हैं, इट इज़ फ्रॉम द मूवी कॉकटेल। जो गाना हमने शामिल किया है डैट इज़ तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। सो लेकिन कॉकटेल मूवी के बहुत सारे गाने हैं जो, मतलब दो तीन गाने हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। सो हमारे साथ राइट आंसर के साथ हैं रेणु गोविल फ्रॉम वैशाली नगर एंड अशोक टेलर जड़ियों का रास्ता से। आपका जवाब गलत है सर, क्योंकि डायना पेंटी इसमें नहीं है। प्रवीण चौहान जी विद द राइट आंसर। किरण शर्मा हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ। हनी भाटिया विद द राइट आंसर। पंकज अरोड़ा फ्रॉम जनता स्टोर। अशोक कनौजिया जी फ्रॉम त्रिवेणी नगर। राज छीपा, गोविंद सैनी, पवन सैनी, लोकेश, मोनू, प्रतीक नाहरगढ़ किले के नीचे से। एंड राज छीपा कहते हैं कि मुझे तो ये लगता है मैम कि गुरुवार की थीम सोचने के लिए आप बुधवार की रात को सोते नहीं हो। वेल, ऐसा तो नहीं है। देखिए अगर सोएंगे नहीं तो इतनी एनर्जी के साथ आप सबसे बातें कैसे करेंगे। बट देखिए होता यह है कि आज का प्रोग्राम जैसे ही होता है, नेक्स्ट में आप क्या थीम लेंगे, उसे कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ये आपके दिमाग में घूमने लगता है। एंड आई थिंक कि इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसीलिए शायद प्रोग्राम इंटरेस्टिंग होता है। तो एक प्रोग्राम होते ही दूसरे की जो थीम है वो आपके दिमाग में घूमने लगती है। राइट आंसर के साथ हमसे जुड़े हैं प्रीति नितिन अग्रवाल फ्रॉम मालवीय नगर और शशि बेनीवाल जी नाड़ी का फाटक से एंड नाजिया विद द राइट आंसर। श्यामला नायर विद द राइट आंसर। अशोक राठी, उमा राठी जी विद द राइट आंसर। रीना और विमला कुमावत जी खेजड़ों के रास्ते से आप दोनों जुड़े हैं हमसे सही जवाब के साथ। किशन सावलानी जी ने दिया है सही जवाब। जगदीश कुमावत, हरी सिंह, शंकर जैन फ्रॉम जौहरी बाजार एंड अविनाश रोहिला विद द राइट आंसर। विनीता सोढ़ानी ने दिया सही जवाब। आप शामनगर से हमसे जुड़ी हैं। शोभित अरोड़ा ने दिया बिल्कुल सही जवाब। मोहम्मद शाहरुख फ्रॉम विद्याधर नगर एंड गुड्डू और यस गुड्डू एंड सीमा अरोड़ा, आप दोनों का जवाब भी है बिल्कुल ठीक। और सही जवाब देने वालों में जो हमारे साथ हैं उसमें यस राधा देवी विद द राइट आंसर। महक गुलाटी ने दिया हमें सही जवाब। रविंद्र पटनायक हमसे जुड़े सही जवाब के साथ। इंदर कुलकर्णी और श्यामला कुलकर्णी आपका जवाब है बिल्कुल ठीक। वैष्णवी हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ। चमन गहलोत हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ। तो कॉकटेल फिल्म का गाना जिन्होंने सही पहचाना, मधु टहलियानी जी आपने दिया बिल्कुल सही जवाब। सुनीता झालानी जी बरकत नगर से हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ। एंड यही लोग हैं जिनके नाम अभी तक हमें दिखे हैं। इनफैक्ट अगर किसी का नाम रह जाएगा तो बिल्कुल जी हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे। एंड मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा फ्रॉम सुशांत सिटी। विनोद दायमा जोबनेर से विद द राइट आंसर। हनी भाटिया विद द राइट आंसर। अंकित विवेक विहा, अच्छा और अंकित जी कहते हैं कि विवेक विहार मैंने छोड़ दिया है, लेकिन बहुत लंबे समय तक हमने आपको विवेक विहार के साथ ही याद किया है, सो इसलिए आपके नाम के साथ वो निकलता है अंकित, सो सॉरी जी। और यस नरेश कुमार राज लालकोठी से विद द राइट आंसर। सीटू सैनी, मनोज कुमावत, पंकज कुमावत, विकास कुमावत, नेमीचंद कुमावत, निवाणा गोविंदकर से विद यस

और यस आई थिंक पंकज अरोड़ा फ्रॉम जनता स्टोर, और अगर किसी का नाम अब हमें दिखेगा तो हम बिल्कुल शामिल करेंगे. सो ये वाला गाना आपके लिए प्ले किया जाए. लेकिन अगला क्लू, सो अब देखिए वही वाली बात है, इंग्लिश वाले गाने यानी

इसके अलावा हमारा एफबी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस पर जाइए, जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर कमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों हमें लिखकर भेज दीजिए। सुमनीषा कोइराला एंड नागार्जुन पर पिक्चराइज्ड इंग्लिश वाला गाना।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भूखंडों की ई नीलामी
1: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, वसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुल ओरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी क्लब, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: Quest. Only on 100.3 FM, Radio Pink City.
5: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
6: वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट। 10:33 और 50 सेकेंड्स। वेल, मेलेडी क्वेस्ट में आज की जो थीम है, बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज तो आपने उलझा दिया। वेल, देखिए क्या होता है कि छोटी मोटी उलझनों को सुलझाने में मुझे लगता है मज़ा नहीं आना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा तो घुमाना होना चाहिए, थोड़ा दिमाग का जोर लगाना चाहिए। सो वेल, हमने आपसे पूछा था थोड़ा सा इंग्लिश वाला गाना जो पिक्चराइज है मनीषा कोइराला एंड नागार्जुन पर, एंड द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल। तुम मिले दिल खिले, बेहतरीन, मेस्मराइजिंग। मैंने आपको बहुत बड़ा क्लू दिया था कि इट्स अ मेस्मराइजिंग नंबर। सो ये गाना जिन्होंने है सही पहचाना, मधु टहलियानी जी हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ, शिव मुसावत, महेश मुसावत, रवि, कुलदीप, मंजीत यादव, रविंद्र, मनोज कुमावत, सीटू सैनी, जयप्रकाश वर्मा, उदयपुरिया गाँव से आप सभी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब। कुसुम विद द राइट आंसर, सुमन जांगिड़ और अंजना जांगिड़ जी दोनों का ही जवाब है बिल्कुल ठीक। रामकिशोर कुमावत जी जुड़े हैं बिल्कुल सही जवाब के साथ। प्रीति अग्रवाल मालवी नगर से विद द राइट आंसर, महेश जांगिड़ जी झोटवाड़ा से विद द राइट आंसर, संगीता कवर वैशाली नगर से फ्रॉम द विथ राइट आंसर, मुकेश सरवणकर, आई होप मैंने आपका नाम सही पढ़ा है, मुकेश सरवणकर जी विद द राइट आंसर, रेणु गोविल फ्रॉम वैशाली नगर एंड विथ राइट आंसर, आई हैव विहान, अनिल गुजराती जी ने दिया बिल्कुल सही जवाब, राशिद हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ, राज छीपा, गोविंद सैनी, पवन सैनी, लोकेश, मोनू, प्रतीक नाहरगढ़ किले के नीचे से, प्रवीण चौहान जी विथ राइट आंसर, विनोद दायमा फ्रॉम जोबनेर, मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा सुशांत सिटी से, अशोक कनौजिया जी फ्रॉम त्रिवेणी नगर, पंकज अरोड़ा फ्रॉम जनता स्टोर, नरेश कुमार राज फ्रॉम लाल कोठी, और सीटू जी कह रहे हैं कि मैम सबका नाम लेंगी बैक टू बैक तो कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। वेल, देखिए धक्का मुक्की नहीं होती है, बट हम चाहते हैं कि हम सभी का नाम लें, लेकिन होता यह है कि कई बार, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जानबूझकर नहीं होता है, हम पूरी कोशिश करते हैं सबके नाम शामिल करने की, लेकिन फिर भी अगर छूट जाता है तो उसके लिए वी आर रियली रियली सॉरी। और पुष्पा दिल्लीवाल जी एंड पायल फ्रॉम सोडाला सही जवाब के साथ, हनी भाटिया जी ने दिया विल्ता राइट आंसर, प्रीति नित्य करवाल फ्रॉम मालवी नगर, और पुष्पा दिल्लीवाल जी कहते हैं कि हमारे चेहरे खिल जाते हैं प्रीति जी आपका नाम देखकर, थैंक यू सो मच जी। और राशिद रोहन गुलाटी विद द राइट आंसर, बाबू लक्ष्मीकांत शर्मा फ्रॉम भिंडों का रास्ता, गुड्डू ने दिया है बिल्कुल सही जवाब, रोहन गुलाटी, शशि बेनीवाल जी नाड़ी का फाटक से, रेखा शर्मा जी विद द राइट आंसर, जयंती पारिक एंड रश्मि पारिक आप दोनों का जवाब बिल्कुल ठीक, मोहिनी कट्टा हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ, मोहम्मद शाहरुख फ्रॉम विद्याधर नगर एंड मोहम्मद अल्फेज आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, महक गुलाटी जुड़ी हैं सही जवाब के साथ फ्रॉम जौहरी बाजार, इंदर कुलकर्णी एंड श्यामला कुलकर्णी, चमन गहलोत जी का जवाब बिल्कुल ठीक, नवीन बंसल विथ राइट आंसर, करतार सिंह जी का जवाब है बिल्कुल ठीक, एंड किरण शर्मा मानसरोवर से हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ। और FB पेज पर अगर कोई नाम वेल अभी तक मुझे नहीं दिखे, यस मोहम्मद रियाज, मोहम्मद शफीक, अल्फेज जवाहर।

नगर से, और मोहम्मद रियाज अल्फेज एंड शफीक आप लोगों ने कॉकटेल फिल्म में भी, कॉकटेल मूवी का जो गाना है वो सही पहचाना था, लेकिन आपका नाम अब नजर आया है, सो हम आपका नाम दोनों ही फिल्मों के लिए अब शामिल करते हैं। अंकित जी का जवाब है बिल्कुल ठीक। अब विवेक विहार तो छोड़ दिया है, तो जहां से भी आप जवाब दे रहे हैं, बट अंकित जी का जवाब है बिल्कुल ठीक। सुनीता झालानी जी फ्रॉम बरकत नगर, सुशीला दत्ता जी बनी पार्क से विथ द राइट आंसर, एंड आई होप मैं मैक्सिमम मतलब सारे लोगों के नाम शामिल कर चुकी हूँ। तो पहले तो हम ये गाना शामिल करते हैं, क्रिमिनल फिल्म का ये गीत सुनते हैं, और अब करना क्या है, शामिल क्या करना है, अपने कान और अपना ध्यान, तो ध्यान और कान दोनों लगाकर सुनने हैं आपको थीम। वेल हिंग्लिश जो है वो तो थीम है ही, अब हिंग्लिश, हिंग्लिश का मतलब कि इंग्लिश वाले दो शब्द तीन शब्द ऐसे कुछ हो सकते हैं। अब एक इस ये जो गाना है इसमें एक मैं बहुत बड़ा क्लू आपको दे रही हूँ कि हीरोइन जो बोलेगी वो पूरा होगा हिंदी में, एंड जो हीरो का जो रिप्लाई होगा, जो एक्टर वाला रिप्लाई होगा वो होगा इंग्लिश में। ओके और ये जो गाना है बहुत ही बेहतरीन सा एवरग्रीन नंबर है, ये गाना पिक्चराइज्ड है रति अग्निहोत्री और कमल हासन पर। रति अग्निहोत्री एंड कमल हासन पर पिक्चराइज्ड ये गाना, जिसमें हीरोइन जब बोलेगी हिंदी में तो हीरो क्वेश्चन करेगा या जवाब देगा, जो भी करेगा वो होगा इंग्लिश में। तो अब रति अग्निहोत्री और कमल हासन पर पिक्चराइज्ड ये बेहतरीन एवरग्रीन गाना आपको है मुझे बताना, और बताने के लिए जाने जाना आपके पास हमारी फोन लाइंस 2200800। इसके अलावा हमारा FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस पेज पर आइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर कमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम, ये दोनों जरूरी हैं क्योंकि सीम जो होती है वो सेम है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, सो गाने के बोल और फिल्म का नाम हमें लिखकर भेज दीजिए। तो रति अग्निहोत्री एंड कमल हासन वाला इंग्लिश वाला गाना।

बिल्कुल, तुम मिले दिल खिले एंड रेडियो पिंक सिटी को सुनकर ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। वेलकम टू द शो मेलोडी क्वेस्ट। और आज मेलोडी क्वेस्ट में बात हो रही है इंग्लिश वाले गानों की, यानी कि वो वाले बॉलीवुड सॉन्ग्स जिनमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था ऐसा एक गाना जो पिक्चराइज है रति अग्निहोत्री एंड कमल हासन पर, एंड द सॉन्ग इज़ फ्रॉम द मूवी एक दूजे के लिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। और सही जवाब देने वालों में नाम शामिल है सुनीता झालानी जी का। और सुनीता जी कहती हैं कि ऐसा लगता है आरपीसी और हम एक दूजे के लिए ही बने हैं। बिल्कुल जी, सीटू सैनी जी ने दिया है हमें बिल्कुल सही सही जवाब। और सीटू जी कहते हैं कि जयपुराइट्स की ओर से ये गाना मैं आपको डेडिकेट करता हूँ, सो थैंक यू सो मच। और सही जवाब देने वालों में हैं शंकर जैन जौहरी बाजार से, अब्दुल फारूक फ्रॉम बाबू का टीबा, रंजीत विद द राइट आंसर, करण दीवान जी विद द राइट आंसर, एंड गजेंद्र शर्मा देड़ापुर कानपुर विद द राइट आंसर, जुबैर मोहम्मद जुबैर फूटा खुर्रा रामगंज से विद द राइट आंसर, चंदा ने दिया है हमें बिल्कुल सही जवाब, मनीष मेघवाल जी जुड़े हैं हमसे सही जवाब के साथ, सुशीला दत्ता जी बनी पार्क से, एंड नरेश कुमावत जी बगरू से विथ राइट आंसर, सुमन पारिक जी ब्रह्मपुरी से हमसे जुड़ी सही जवाब के साथ, किरण शर्मा जी मानसरोवर से विथ राइट आंसर, पूनम बासवानी जी आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, एंड पंकज अरोड़ा जी फ्रॉम जनता स्टोर। और पंकज जी कहते हैं कि मैं इसी गाने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि प्रेम प्रकाश थिएटर में ये मूवी समोसे के साथ मैंने 20-25 बार देखी है। वेल, देखिए ये फिल्म सच में बहुत अच्छी है तो और आज के प्रोग्राम के लिए शुक्रिया, थैंक यू जी आपको भी। मधु सिन्हा स्मृति सिन्हा फ्रॉम सुशांत सिटी विद द राइट आंसर, अशोक कनौजिया जी फ्रॉम त्रिवेणी नगर, नरेश कुमार राज लाल कोठी से विद द राइट आंसर, मधु टहलियानी जी सही जवाब के साथ, विनोद दायमा फ्रॉम जोबनेर, प्रवीण चौहान जी विद द राइट आंसर, संगीता अग्रवाल फ्रॉम गुजर की थड़ी, संगीता कंवर जी वैशाली नगर से, रेणु गोविल जी भी वैशाली नगर से, प्रीति नितिन अग्रवाल मालवी नगर से, भानी भाटिया विद राइट आंसर, महेश जांगिड़ जी आपका

जवाब है, बिल्कुल ठीक। एंड पुष्पा दिल्लीवाल जी सोडाला से सही जवाब के साथ। और और ये मधु टहलियानी जी कहते हैं कि आपके साथ मेलोडी क्वेस्ट खेलने में अलग ही मज़ा आता है, तो उसके लिए जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही जवाब देने वालों में है बसंत कुलाटी, रजत जी ने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब, सीटू सैनी जी विद द राइट आंसर, पीयूष पाटीदार का जवाब बिल्कुल ठीक, मोहम्मद शाहरुख फ्रॉम विद्याधर नगर, राधा देवी जी का जवाब बिल्कुल ठीक, राम सिंह चौहान चाकसू से हमसे जुड़े सही जवाब के साथ, बाबू लक्ष्मीकांत शर्मा फ्रॉम भिंडो का रास्ता, शशि बेनीवाल जी नाड़ी का फाटक से, रिधिमा मालवी नगर से विथ राइट आंसर, इंदर कुलकर्णी श्यामला कुलकर्णी आपका जवाब बिल्कुल ठीक, चमन गहलोत जी ने दिया बिल्कुल सही जवाब, रविन्द्र पटनायक का जवाब बिल्कुल ठीक, जाहिदा बानो विद द राइट आंसर, नवीन बंसल और करतार सिंह जी आप दोनों का जवाब बिल्कुल ठीक। तो अभी तक यही नाम है जो मुझे दिखे हैं, इनफैक्ट फिर भी किसी का नाम रहेगा तो हम जरूर शामिल करेंगे। और अब अगला जो क्लू है वो आपको दे दिया जाए, डेट विल बी द लास्ट क्लू। दीपिका पादुकोण और फरहान अख्तर पर पिक्चराइज्ड इंग्लिश वाला गाना। और एक और क्लू दे देती हूँ, ये गाना जो है ना एक ऐसा लगता है किक, मतलब बहुत ही मैसमराइजिंग, शंकर महादेवन की वॉइस एलिसा मेंडोसा और दीपिका पादुकोण एंड फरहान अख्तर पर यह गाना पिक्चराइज्ड है, बेहतरीन सा गाना है। तो ये ग्रूविंग सा नंबर कौन सा है फरहान एंड दीपिका पादुकोण पर पिक्चराइज्ड, आपको है मुझे बताना, और बताने के लिए जाने जाना आपके पास हमारी फोन लाइंस 2200800। इसके अलावा हमारा एफबी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस पेज पर जाकर जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दे सकते हैं। सो दीपिका पादुकोण एंड फरहान अख्तर।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: Melody Quest. Only on 100.3 FM Radio Pink City.
5: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
6: वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट। और मेलेडी क्वेस्ट में आपसे पूछा था थोड़ा सा वो इंग्लिश वाला गाना जो पिक्चराइज्ड है दीपिका पादुकोण एंड फरहान अख्तर पर, एंड द सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। उफ तेरी अदा, तो बेहतरीन सा ही गाना सो अभी आपके लिए प्ले होगा। लेकिन उससे पहले उनके नाम जिन्होंने हमें दिए हैं सही जवाब, अंकित शामनगर से, अब आपका सही पता भी हमने बता दिया है, और सुशीला दत्ता जी बनी पार्क से, मधु टहलियानी जी विद द राइट आंसर, गज्जू ने दिया है हमें बिल्कुल सही सही जवाब, शशि बेनीवाल जी फ्रॉम नाड़ी का फाटक, गजेंद्र सोमानी जी विद द राइट आंसर, वचन ढोंडियाल आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, शंकर जैन जौहरी बाजार से विथ राइट आंसर, मीनाक्षी ने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब, राधा किशन सावलानी जी सिंधी कॉलोनी बनी पार्क से जुड़े हैं सही जवाब के साथ, पूर्णिमा हमसे जुड़ी सही जवाब के साथ, गुड्डी जांगिड़ जी आपका जवाब है बिल्कुल ठीक, पंकज अरोड़ा जी जनता स्टोर से विथ राइट आंसर, रवेश कुमार राज लालकोठी से विथ राइट आंसर, विनोद दायमा जोबनी

वीर सिंह, प्रवीण चौहान जी, आपका जवाब बिल्कुल ठीक। पुष्पा दिल्लीवाल जी, पुष्पा दिल्लीवाल जी सोडाला से, मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा सुशांत सिटी से विद द राइट आंसर। और मधु सिन्हा जी एंड ये कहती हैं कि मैम आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और हम सच में आपका इंतज़ार रहता है। सो थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति अग्रवाल जी कहती हैं मैम आज के जो क्वेश्चन है ना बहुत टिपिकल हैं। वेल देखिए टिपिकल तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़े से दिमाग के घोड़े जो हैं वो दौड़ाने पड़ रहे हैं। सुनीता झालानी जी कहती हैं कि हे या, बस इतना ही समझ आया फ्रॉम द मूवी कार्तिक कॉली कार्तिक। आपका जवाब है बिल्कुल ठीक। सुनीता झालानी जी बरकत नगर से, रेणु गोविल जी वैशाली नगर से, अशोक कनौजिया जी फ्रॉम त्रिवेणी नगर, हनी भाटिया विद द राइट आंसर, सीटू सैनी जी विद द राइट आंसर, गोपाल सैनी एंड अरुणा सैनी, आप दोनों का जवाब है बिल्कुल ठीक। अरुणा सैनी एंड साथ में प्रत्यक्ष सैनी, आप तीनों का जवाब है बिल्कुल ठीक। रीना कुमावत खेजड़ों का रास्ता से हमसे जुड़ी विद द राइट आंसर। मनोहर कुमावत गज्जू ने दिया है बिल्कुल सही सही जवाब। एंड पीयूष पाटीदार विद राइट आंसर। रिद्धिमा फॉर्म मालवीय नगर। एंड गणेश मेघवाल जी विद राइट आंसर। सुमन पारेख, पूनम वासवानी, किरण शर्मा, करण दीवान एंड विथ राइट आंसर आई हैव रेखा शर्मा, जयंती पारेख, रश्मि पारेख, महक गुलाटी, इंदर कुलकर्णी, श्यामला कुलकर्णी, वैष्णवी विद राइट आंसर, हेमलता जांगिड़ एंड चमत गहलोत जी, आप दोनों का जवाब भी है बिल्कुल ठीक। और मुझे लगता है कि मैं शायद सबके नाम शामिल कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी किसी का नाम रहेगा तो बिल्कुल हम आपके नाम ज़रूर शामिल करेंगे। राइट नाउ एन्जॉय द ट्रैक उफ तेरी अदा।

0: आप हैं आरजे प्रीति के साथ, प्रीति के साथ ओनली ऑन 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: ते सुन रहा हो चटकीलो राजस्थान 100.3 एफएम माला। काई तो खास छे, अर काई तो बात छे।
2: 11:05 और पूरा 48:50 सेकेंड। तो भाई चटकीलो राजस्थान, अलबेलो राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान, उमंग उत्साह रो भंडार, त्योहारा की खान, बोली रंग ढंग खान पान सब अलग ही राखे छे पहचान। और ई सही छे आपनो अपनो चटकीलो राजस्थान। 11:06 और पूरा 11 सेकेंड। प्रीति था की ईस्सा और म्हारी अलबेली नायर और केसरिया मुठियार, आज हो जाओ बड़ी फुर्ती सु तैयार। अब फुर्ती सु तैयार ई लिए क्योंकि आज मैं बात कराला खेल की। भाई देखो, खेल की जब बात करा तो खेल के लिए कह सके छे कि खेल यानी कि दिला को मेल। खेल वो हो छे जब मैं खेलता रहा छा तो मतलब सब कुछ भूल जाओ छा, खेल में कोई भेदभाव कौन हो जाए। तो बचपन का जो खेल जो थे घना खेले ओला है ना, बचपन में तो मने लगे छे सभी खेले छे, तो बचपन में थे भी बहुत सारा खेल खेलिया होला। और आज भी वे खेल जो छे बड़े ही साधारण सा चाहे खेल हो, वे थाने अगर खेलबा ने मिल जावे तो ये थे मौको कौन चुको, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। तो वे बचपन का खेल कुछ और अलग अनूठा भी हो सके छे, वे बचपन का खेल जो थे खेलिया और आज भी अगर वहाँ खेल कोई तहने गलती से थे उन खेल ने कोई ने

खेलता देख लो, और थाने अगर दिख जावे या थाने मौको मिल जावे कि थे भी खेल सको तो बस दिल खिल जा लो। तो अशा बचपन का खेल जया चंगा पो हो सके, जैसे तोलिया हो सके, पकड़म पकड़ाए, विश अमृत, पोषंपा, गिल्ली डंडा, कहीं भी और भी बहुत कुछ जो अपना दिमाग की ईजाद हो। देखो पहली जो हो जा, पहली कहीं छे कि ये खिलौना अत्ता टाम टीम कोनो हो जा, है ना। तो जद अतरा टाम टीम कोना अच्छा, पहली कहीं हो जा खाली हो जा टावर, और टावर आ करने कहीं हो जो टीम। तो ये टावर जो छे बहुत सारा खेल बना भी था। अगर कोई अशो खेल भी बनायो, कोई पारंपरिक खेल भी थे खेल आओ, कशो भी वो खेल हो तो थे कर सको छो उ खेल की बात माँ की साथ। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM प्रोग्राम चल रहे छे चटकीलो राजस्थान, और आज चटकीलो राजस्थान में मारी जान बात अपना बचपन का खेल या खास खेला की।

0: बिल्कुल जी, नथनी तो चमके, चूड़ी भी चमके, लेकिन बचपन का खेल जद में खेला, बचपन का खेल ने भी खेला, लेकिन अगर खाली माँ को नाम भी सुन लिया तो भी माँ को चेहरो चमके, माँ को जीवड़ो धड़के, तो अशो कोई खेल देखा कौन छे जो बता रहा छे आपने। हेलो
1: हेलो, हाँ मैडम बोले।
0: हाँ जी राधे राधे। अच्छा पहली तो एक बात बताओ, थाको फोन स्पीकर पे तो कौन है? आपका फोन स्पीकर पे है?
1: नहीं स्पीकर पे नहीं है।
0: अच्छा हाँ, आप बताओ जी कशा खेल की बात बताओ ला।
1: मैडम हम किसी पार्टी, हमारा ग्रुप बना हुआ है 20-25, उसमें कई बार हम पोशंपा भाई पोशंपा खेलते हैं लेडीज, तो बहुत मजा आता है, बचपन की यादें ताजा हो जाती है।
0: पोशंपा भाई पोशंपा, डाकू ने क्या किया।
1: हाँ डाकियों ने क्या किया। और मैडम एक वो घोड़ा चमार था जो पीछे से रुमाल रख देते हैं, पीछे से मारते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, तो बिल्कुल सच में देखो यहाँ की आवाज़ से ही लाग रही है कि वे बचपन का खेल अगर वे थोड़ी सी भी देर खेले जाए तो क्या मन खिल जाए। सच बात है क्योंकि बचपन तो मने लागे छे कि वे जो खेल छा, और पहली वे जो खेल छा, क्योंकि बहुत मैं जहाँ था ना शुरू में भी कही कि पहली बहुत सामान बहुत टाम टीम को न छा, लेकिन साधारण सा खेल छा, लेकिन बस बहुत सारा टाबर वहाँ कने बहुत सारो टीम, और बस मैं वहाँ खेला से जुड़ जाओ छा। अब माँ के साथ कुन जुड़ गो। हेलो
2: हेलो तिरती जी, नमस्ते।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे थे?
2: हूँ बशीर बात करूँ सुधी जी।
0: हाँ तो बशीर जी बताओ, बचपन को कशो खेल जो थे खेले अच्छा और आज याद कर रहे हो?
2: अच्छा जो बचपन का जो हमने जो खेल खेले, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ?
0: हाँ जी बिल्कुल करो।
2: जो मारो फेवरेट खेल आतो बचपन में वो आतो क्रिकेट।
0: अच्छा
2: हाँ, हम जब छोटे थे, हालांकि मैं कभी स्कूल नहीं गया था क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने घर पे ही पढ़ाई की है 5वीं तक, तो हम सारे बच्चे जो थे प्रीति दीदी, वो जब शाम का टाइम होता था तो हमारे यहाँ पे गांव ग्रामीण क्षेत्र में हम रहते थे, तो वहाँ पे कुछ पशु वगैरह जैसे बकरियां वगैरह आते हैं उनको चारने हम जाते थे। फिर हम क्या करते थे कि क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलते खेलते एक दिन ऐसा हुआ था कि हम क्रिकेट खेल रहे थे और किसी बच्चे ने वो जो बॉल है वो फेंकी और बॉल डायरेक्ट मुझे आंख में लग गई, थोड़ा सा आंख से पीछे।

0: फिर मुझे उस बच्चे पे आया गुस्सा और दूसरे तीसरे दिन मैंने जानबूझ के उस बच्चे को मारा।
1: अच्छा तो या तो गलत बात है। पहली मैंने एक बात बताओ कि थे क्रिकेट तो खेले छा तो था कने बैठ छो कि कपड़ा धोवा का डंडा ने बना ले छा
0: ना कपड़ा धोवा वाला डंडा क्योंकि बैट वगैरह हमारे पास में जो था वो
1: बिल्कुल बिल्कुल देखो पहली का मैंने लागे छे ज्यादातर जो बच्चा छे ने वे अगर क्रिकेट भी खेले छे तो वो जो धोवणो हो छे ना अपना कपड़ा धोवा को डंडो उसे ही खेलिया छे है ना।
0: आज उस दिन को हम बहुत मिस कर रहे हैं जी।
1: बिल्कुल जी देखो मने लागे छे बचपन वो समय छे जो शायद और शायद कोने मन तो यहाँ लगे छे पक्की बात छे यहाँ पंख लगा उड़ जाओ छे और फिर वो जो खुशहाल वो जो सपनीलो सो बचपन छे ने बस उनकी याद आता ही मुस्कुराहट आ छे और वो मुस्कुराहट के साथ पूरो जीवन मुस्कुराता ही करे छे है ना। हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी शंकर जी राधे राधे।
2: राधे राधे राधे राधे। बचपन की तो बात छोड़ो बचपन में जो खेल खेल लिया वो तो आजकल का खेल ही कौन सा कर।
1: अच्छा तो थे कहीं खेला था।
2: मैं तो सब खेलिया बच्चे जो खेल बोलने जो कौन खेला।
1: अच्छा कहीं कहीं तो दो चार का नाम तो बताओ।
2: दड़ी मार को दड़ी बाग होते और मतलब क्रिकेट होते और घोड़े होती और ये ताश का पत्ता होया करा जा वो भी खेला करा जा।
1: अच्छा दड़ी मार के यहाँ खेला था। चलो पहली बताओ दड़ी मार के यहाँ खेले था।
2: दड़ी मार के यहाँ मान लो वो सितोलिया रखा जा फिर उनको मारे जा जो फिर आपस में मारे जा और वो दड़ी मार दिया आठ दस जना होया करे जो आपस में गेंद की मारिया करे जा।
1: बिल्कुल सितोलिया की तरह हो जो
2: सितोलिया की जी। और एक बार घोड़ी होती वो आठ आठ दस जना घोड़ी वो लगा ले लाइन तक खड़ा हो जाओ जा फिर उनको बैठा करे जा और वो छुपी वो खेरे जा कहीं दस के कहीं बोले जा उन्हें छुपा छुपी
1: छुपन छुपाई तो शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़बा के लिए। और भाई देखो बचपन का खेल वो सच में वे खेल छा कि वाने में दिल से खेले छा सच में बचपन ने जिए छा। तो बचपन का कोई ऐसा खेल जो थे खेलिया हो और आज वहाँ की याद साझा कर बचाओ तो थे जुड़ सको छो माँ से। माँ की फोन लाइन 2200 800 और माँ को एफ बी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। हेलो
3: हेलो
1: नमस्कार जी कौन बोल रहे थे। हेलो यहाँ से वहाँ को संपर्क कौन हो पायो लेकिन थी वहाँ से संपर्क कर सको जो वहाँ की फोन लाइन 2200 800 साथ ही साथ वहाँ को एफपी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। वे बचपन का खेल जो आज भी अगर देखे लियो तो दिला को करा दे मेल।

0: रेडियो पिंगसरी 100.3 FM प्रोग्राम चल रहे है चटकीलो राजस्थान। और आज चटकीलो राजस्थान में बात हो रही है वे बचपन का खेल जो तू खेलिया। पुष्पा दिल्लीवाल जी माने कहे छे कि भाई देखो बचपन में मैं खो खो, सितोलिया, गली डंडा, चाक से जमीन पे वे जो खाना बना छा ने, और चाक से जमीन पे खाना बना छे उन्हें कहे छे पैल डूज, लंगड़ी टांग भी खेले छा, रस्सी कूद, बहुत सारा खेल छा जो मैं खेले छा। तो बिल्कुल जी देखो बचपन का जो खेल छे ने वे सच में निराला ही हो छे और अलग ही को अंदाज हो जाए, क्योंकि बस खेल खेलना चाहे तो खेल में बना ले जा, और बहुत सारा सामान, बहुत सारी सुविधा भले ही चाहे माँ कने कौन ची, लेकिन हाँ खेल बनाबा के लिए जो दिमाग छे वो माँ कने पूरो पूरो छो। अब देखा चा कौन छे माँ की सन। हेलो
1: हेलो, मैं आरती शर्मा बोल रही छू, उदासपुरा छू।
0: हाँ जी आरती जी, बताओ बचपन में कई खेल खेलिया थे।
1: मैं बचपन में रस्ती बहुत खेलिया, रस्सी दो जना तो पकड़ ले तेरे बीच मार कूद देते ने वो रस्सी।
0: अच्छा तो रस्सी कूदवा तो यानी कि थाने तो सामंजस्य की घनी आदत होगी है, क्योंकि रस्सी तो वो ही कूद सके छे।

0: इके अलावा
1: छोटा बार का बच्चा तो जाना ही कोने रस्सी खेल काये उचे।
0: बच्चा जाने कोने, देखो कोड़े ने कोड़े मने लागे छे कि ये माँ की भी गलती छे कि मैं
1: हाँ
0: बच्चा ने
1: फोन
0: देखो
1: देते यार।
0: क्योंकि फोन में देख रहा था तो बच्चा भी देखेला है ना।
1: हाँ यार सही
0: तो
1: छे।
0: पहली भाई देखो बच्चा ने समय देबो, बच्चा ने यो बताबो कि हाँ बच्चा छे, जद में खुद ही समय कोने माँ कने और मैं ही कौन ले पावा, तो फिर यह बात
1: हाँ
0: बताओ कि बच्चा कया खेलेला, मैं खुद फोन में उलझा रहा था आजकल। पहली ये छे कि वहां का बड़का भी आपका काम में रहे, अच्छा वे भी सब एक दूसरा को साथ जो छो उन्हें मजा ले
1: हाँ
0: जा है ना आजकल, लेकिन मैं
1: और
0: भी कौन
1: बड़का
0: ला,
1: कन तो खेत का भी काम सब।
0: बिल्कुल और बहुत सारा काम रहे छा। आरती जी से संपर्क माँ को टूट गो, लेकिन अशो खेल जो बचपन में थे खेलिया और आज भी उसे छे अगर संपर्क तो बस मन मल जी खिल जावे। तो भाई देखो माँ ने फोन कर्या रमन जी, और रमन कहे छे कि भाई वे कहीं छे कि वे रहवे जंडे रहे छा ना, तो कहीं छे कि वहाँ का मामा जी जो छे एक बहुत बड़ो अशो गोदाम सोचो उन गोदाम ने किराया पे देवे छा, जब ऊपर किराया पे दे रखे छा तो कहीं पे वो सामान रहे छा, तो यो हाथ को रिक्शो को नो कि वो मतलब जी में सामान मिले छे बैठा बा को कोने और सामान ले जाबा को हाथ से खींच बा को वो पड़ियो रहे छा, तो बोले मैं सारा बच्चा रिक्शा वालों बनर खेला छा। और माँ ने तो मजो आओ छो कि काई बताऊं, और रमन जी की जब बात सुनी तो मने भी मारो बचपन याद आ गो, क्योंकि देखो मैं नानेरा में रही तो कहीं छे कि माँ की माँ का जो मामा जी छा वहाँ के भी कहीं छे नीचे यहाँ गोदाम छो और यहाँ रिक्शा छो, और मैं सारा बच्चा और मैं थाने बता कौन सकूँ कि वो बचपन का शो छो, आज तो सोचा लेकिन हंसी आ छे, लेकिन ऊ वक्त मतलब मैं सब रिक्शा वाला बनबा के लिए अत्ता अति जतन करे छा, भगवान मने बनवाने मिल जावे आज तो मैं बनूला। और फिर मैं आवाज लगा था कि बाकी सब सवारियां बनता और मैं आवाजा लगा था कि छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ रामगंज और सवारियां पर अच्छा, लेकिन वो जो खेल छो एक अलग ही खेल छो बस वो बना लिया अच्छा, तो जब भी वो रिक्शो मिलता हो और बस मैं सारा का सारा सवारियां पर अच्छा। तो कोई अशो खेल जो बचपन में थे भी खेले हा, लेकिन उनकी हो एक कोई अलग याद तो थे भी साझा कर सको छो माँ के साथ, अब देखा कौन छे माँ के साथ। हेलो
1: नमस्ते मैडम,
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे थे?
1: मैं राजेश बोल रही हूँ, आपने बात रोटा सु मैडम।
0: अच्छा तो राजेंद्र जी बताओ बचपन में कशो खेल खेले छो?
1: मैडम खेल खेले जावा, लुक लुक मीचनी खेलिया, गिल्ली डंडा खेलिया और मारदड़ी खेलिया।
0: अच्छा तो गिल्ली डंडा जो छे, तो गिल्ली डंडा थे खुद ही बना अच्छा कि था आइला बाइला बना अच्छा?
1: नहीं, साथ ही बनाओ जो चोरा चाबरा सारा मिले और गुल्ली डंडा बनाओ जा और बस कंचा और खेला जा। मैं तो
0: देखो लेकिन पहली का जो खेल छा जैसे गुल्ली डंडा हो रुमाल झपट्टो, मतलब ये जो सारी चीजा छी अलग से कोन लियानी छी, बस माँ कने संसाधन छा वहां से मैं खिलौना बना ले जा है ना,
1: बना ले जा बना ले जा बना ले जा।
0: और कतरा मजा से खेले छा।
1: डब्बा में मैडम गोले भी डब्बा में मेल था सुखार कोई लेना जी, और बस जेब में भी कचड़ कचड़ बोलो जी। यहाँ
0: अच्छा कदी खेल का चक्कर में डांट वाट पड़ी?
1: माता राम तो फूक नहीं फूटे जी।
0: चलो जी कोई बात कौन है, लेकिन वाह जो मार्च है वाह आज तो उनकी भी याद आवे छे ना।
1: हाँ मैडम हाँ बात
0: तो बचपन का वे खेल जो थे भी खेलिया होला, सितोलिया चंगा पो पुषम्पा कदम डाली कैरम खो खो कंचा गिल्ली डंडा पहल दूर विषमरित, अशा बहुत सारा खेल छे, मतलब जद मैं काल सोच रही थी लिख रही थी तो मने लाग्यो कि हाँ कत्ता कत्ता सारा खेल छे जिमे सब खेलिया छा, और मतलब सच में अत्रो मजो आओ छो कि बस आज भी सोच रही मजो आ रही छे। हेलो
2: हाँ जी, राम सिंह बोल रहा हूँ जी।
0: हाँ जी राम सिंह जी, कोड़े से बोल रहे छो?
2: क्या
0: अच्छा तो बताओ जी कशो खेल खेले? अच्छा
2: बचपन में खेल रहा था एक पकड़ दस,
0: अच्छा क्या खेल अच्छा?
2: इन्हें कहे थे कि 10-12 छोरे तो मिनरल और फिर एक ना पकड़ा था, एक ना पकड़ अगर 10 तक गिनती में वह छोड़ तो भाग जो जब तक ठीक है, नहीं तो जब तक वो पकड़ रही रात का।
0: अच्छा
2: भाई 10 तक गिनती बोल दे, जब तक तो छूट जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हार गया वो तो उसको
0: अच्छा
2: टीम से बाहर निकाल देते। एक पकड़ गया तो और गुल्ली डंडा और ये खूब एकदम बचपन में, बचपन का तो कि खेल भी कुछ निराला है, कोई भी खेल खेल दो, अब आजकल तो खेल खेलने का मौका ही कहाँ मिलता है।
0: बिल्कुल जी बचपन का जो खेल छे वे बहुत निराला खेल है ना, अनूठा खेल, और बचपन का खेल मतलब कहीं कहूँ मन तो खुद ने आया लाग रहा छे कि हाँ जय आपा अपना बचपन में ही पहुंच गया। तो अगर ते भी कोई अशो खेल जी की याद था ने बचपन में पहुंचा दी तो ते साझा कर सको जो माँ के साथ। हेलो हेलो
2: हेलो
0: नमस्कार

0: नमस्कार,
1: कौन बोल रहे थे?
0: मैं सीटू बात कर रहा हूँ।
1: हाँ जी सीटू जी, चौमू से बात कर रहे छो?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ तो बताओ जी, कशा खेल खेलिया बचपन में?
0: बचपन में कहीं मैडम, मैं तो अभी तानी लुकनी चाहिए जिन्हें छुपन छुपाई खेल है।
1: हाँ
0: बड़ो मजो आवे।
1: बिल्कुल, यहाँ लागा छा कि मैं वापस टावर ही बन गया है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सीटू जी, अच्छा छुपन छुपाई के अलावा और कहीं खेलिया?
0: और स्कूल का माइन है, मतलब डाकन डब्बा। और चोर पर्ची जो अभी भी खेल लिया था कभी कबार, तो बच्चा के साथ
1: राजा मंत्री चोर सिपाही।
0: बिल्कुल।
1: वो तो मैंने लागे छे कत्तो, मतलब अच्छो मजेदार सो खेल है ना, खाली चार पर्ची चाहिए। हाँ। चार जाना चाहिए और खेल लो बैठे बैठे।
0: और साथ का माने चग्गा भी।
1: हाँ अच्छा चलो, राजा मंत्री चोर सिपाही थे, अब जया थे स्कूल में पढ़ाओ चो है ना, तो बच्चा के साथ भी खेलो चो?
0: बिल्कुल, शनिवार की शनिवार।
1: अच्छा तो बच्चा ने पतो छे ये खेल को क्या खेले छे?
0: बिल्कुल।
1: अच्छा चलो, तो अगर आज की पीढ़ी को कोई सुन रहे छे तो एक बार बताओ कि राजा मंत्री चोर सिपाही क्या खेले छे?
0: चार पर्चियों पे मतलब इनका नाम लिखा जाता है और चार कैंडिडेट के बीच में पूछा जाता है।
1: चार जना चार पर्चियां, जहाँ पे एक पे लिखे ला राजा, एक पे मंत्री, एक पे चोर, एक पे सिपाही।
0: बिल्कुल। और फिर राजा ये आदेश देता है मंत्री को कि आपको चोर को पकड़ना है। Yeah.
1: और कत्तो मजा को खेलते है ना।
0: बिल्कुल।
1: खाली चार पर्चियां को। चलो जी सीटू जी, था को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़वा के लिए, और थे भी जुड़ सको जो वहाँ की सात चटकीलो राजस्थान। और आज चटकीलो राजस्थान में भाई जान बात हो रही है वे बचपन का खेल जो बस दिल ने खुश कर दे छा, और आज भी अगर खेलवा ने मिल जावे ना तो बस मन को मोरियो नाच तो ही फिर है। हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी,
1: कौन बोल रहे थे?
2: मैं अनीता बोल रही हूँ, प्रताप नगर से।
1: अच्छा तो अनीता जी बताओ, बचपन को कोई खेल और अगर आज भी खेलो छो तो वो भी बता दो।
2: अरे बहुत बचपन का तो बहुत खेल थे पुराना, बहुत अच्छा अच्छा।
1: जया
2: जाना सर, बहुत बहुत तो वर्णन करती है। चंगा पो, रस्सी कूद वो, पोसंबा, पैल दूध, एक पचेटा भी खेला था गेंद, गुप्ता जी ने बोले थे।
1: अच्छा क्या खेला जा?
2: चार गुट्टा ले जा पाटा का, चार पाटा और एक गेंद ले जा, फिर वहां से पत्ते का खेला जा, फिर गेंद ना उठा सा वरना उठा हो जा।
1: बिल्कुल।
2: बड़ो मजा आओ से ये गेम में।
1: अच्छा अब अगर खेलबा को मौको मिले तो कशो वो खेल छे जो ते खेलबो को चावला सबसे पहले?
2: ये सारा खेल खेलबो चावला मौको मिले तो।
1: अच्छा सारा, लेकिन फिर भी
2: खेल वाला साथी मिल जाओ खेल वाला।
1: नहीं अगर मान लियो कि चलो थाने कह जाए कि भाई एक खेल खेल सको जो, तो कशो खेलोला?
2: मैं ये पचेटा ही खेला ला या फिर चंगा पो।
1: चंगा पो मतलब मने लगे छे कत्ता मजो, आज का जो लूडो छे उमें तो मजो को ना आवे, जीत तो चंगा पो में आजो है ना।
2: सही बात है। तो सर
1: हाँ, और पहली देखो कहीं छे चूना कांगना हो चा जी, मैं चौक से मन जाओ, जरूरत ही कौन सी गुड़े मान डालो।
2: सही बात है।
1: हाँ, चौक से फटाफट बनाया ले आया गीलो कपड़ो पोछा चालो।
2: सही बात है। मैं तो अबार भी बना रख रही हूँ एक आदत पे, अबार मैं दो ही त्याग से खेलूँ तू के साथ।
1: देखो अब तो कहीं छे कि क्योंकि फर्श अशा होगा कि अब थाने कागज पे, पर जया पहली की अगर आपा बात कराने तो पहली चूना का। हाँ चूना का फर्श हो चा तो आंगना पे बनाया और उन्हें खटखट मेट दिया, जद मर्जी हो खेल लो। और बचपन का खेल अगर थाने लागे छे कि हाँ बाकी याद थाने दे छे एक अलग ही एहसास, तो ते साझा कर सको जो माँ की साथ, माँ की लाइना 2200800।

0: अच्छी। अब आज मारी बहन ससुराल में छे, साड़ी भी छे, गहना भी छे, लेकिन वे बचपन का जो दिन छे वे वाने घना याद आ छे। बिल्कुल जी, देखो बचपन अशोई छे। नरेश कुमावत जी कहे छे कि मैं तो सितोलिया और बी मैं गेंद हो छी, तो कपड़ा की और वो गेंद की सिलाई डोरा सू कर माँ का दादाजी और अति खतरनाक सिलाई करे छा कि नरेश जी को पढ़र मने हंसी अत्यारी छे कि मने लाग रहे छे पढ़ू लिख गया। नरेश जी कहे छे कि कपड़ा और वो गेंद की सिलाई जो डोरा से छे ने वे माँ का दादाजी करे छा, और वे अति खतरनाक सिलाई करे छा कि अगर मंगरा में चोट उड़ गई, मंगरा में देखो जो कौन समझे ना, तो मैं वाने बता दे ऊँचू कि ये जो सितोलिया को बता रहे हो छे, सितोलिया मतलब जो लोग सुन रहे थे और जाने कौन पतो, सितोलियो वो खेल हो छे जिमें भाटा पे भाटा जमाना पड़े छे और फिर कहीं छे कि दूसरों गेंद मारे लूँ को पहली पहली वे भाटा। अब वो जो गेंद हो ची ना, वो गेंद मारेला, तो गेंद मारेला तो देखो लाग भी सके छे भाई, अया छे ना वो तो निशानो छे, लाग भी को चूक भी को। तो नरेश कुमावत जी कहे छे कि वो जो गेंद खेलबा की सितोलिया की चीने वे वहाँ का दादाजी बना छा, और दादाजी उमें अतरी खतरनाक सिलाई करे छा कि अगर कोई का मंगरा में यानी कि कोई की पीठ पे व लागी गेंद तो 10 मिनट तक तो उनकी चरमराहट कौन मिटे छी, मतलब अत्तो बड़े छो अत्तो जले छो क्योंकि दर्द हो छो, वह गेंद अति खतरनाक बना छा। और वे कह रहे छे कि एक दिन का ही हुई हो कि वे खेल रहा छा तो दादाजी जो छे वे वंडी ने मतलब झंडे वे खेल रहा छा ना, बच्चा टावर खेल रहा छा, वंडी नहीं दादाजी जा रहा छा, जा रहा छा तो दादाजी का खुद का ही मंगरा में लाग गई। और जब दादाजी का मंगरा में लागी तो वाने पतो लागियो कि हाँ ई गेंद की जो सिलाई छे ने इसे कया चरमराट हो छे, और उ दिन के बाद से उ गेंद की सिलाई बंद होगी। लेकिन मारी हंसी बंद कौन हो रही कि जब दादाजी के लागी होली तो या टावरा के कतरा सोटा उड़ा। वनडे नरेश राज जी कहे छे कि भाई देखो मारो जो बचपन छे वो सवाई मानसिंह स्टेडियम में बीतियो छे, और मारा पसंद का खेल फुटबॉल छो, उनके अलावा क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, लंबी कूद, सितोलिया, कंचा, 3 काटी, 7 काटी, 9 काटी, 12 काटी, 16 काटी, गुलाम लकड़ी, तो माँ को बचपन तो खूब खेलियो मैं। और संगीता अग्रवाल जी कहे छे कि आज तो थे माने बचपन में ही पहुंचा दिया भाई, बचपन में वे कहे छे कि संगीता अग्रवाल जी कि माचिस जो छे ने माचिस का टाशा से उड़ा उड़ार खेले छा, और बोले मुझे जो मतलब संगीता जी ने सबसे ज़्यादा पसंद छो वे क्या करते थे, काटे पुराने टूटे फूटे जो पत्रे होते हैं ना, मटरों के जो ठीकरे होते हैं उन पे नारियल के खोल पे चौक से लकीरें बना के लाइनें खींच देते थे, तो दो परियां बनाते थे और जो सबसे ज़्यादा लाइन छुपा पाता था और वो ही मतलब जीतता था। ओहो, मतलब काटा पुराना टूटा फूटा पत्रा पे वहाँ पे मटका का ठीक रहा से नारियल का खोल पे चौक से लकीरा बना लाइना खींचता था, दो पारियाँ बना छा और फिर जो लाइन छुपा पाते छो मतलब कि छुपानी हो ची जो छुपा पाओ सबसे ज़्यादा वो हो लो विनर। वे कहे छे कि आज का जो घरवाला छे वे महंगी महंगी चीज़ा ले आर दे छे, लेकिन वहाँ का जमाना में तो गेंद भी में खुद बना छा और सितोलिया खेला छा। अब सितोलिया की बात मत करो, नहीं तो माने नरेश जी का दादाजी याद आ जाला और पाया लागे लो कि जब नरेश जी का दादाजी के सितोलिया की गेंद की पड़ी होली तो वहाँ के बाद या सबको काई हुई हो लो। और देखो बचपन मने लागे छे सच में अशोई छे। और संगीता जी कहते हैं कि थे तो सारा ही खेला को नाम ले लियो, या सबसे ज़्यादा तो सितोलिया ही सब खेले हैं, एक बार बोले मेरे बॉल की लग गई थी तो फिर मेरी मम्मी ने कपड़े की बॉल बना कर दी ताकि उससे किसी के भी नहीं लगे। तो बिल्कुल देखो सबको ध्यान राखबा की तो राजस्थानिया की आदत है। और अब माँ की फोन लाइन, हेलो राधे जी, कौन बोल रहे हो छे? बिल्कुल जी, कौन बोल रहे हो छे?
1: प्रोड्यूसर जी को राधे राधे। मेरा नाम राधा किशन सावलानी, सिंधी कॉलोनी।
0: हाँ तो राधा किशन जी बताओ कशो खेल छा जो थे सबसे ज्यादा खेलिया?
1: मैं सबसे पहले जो बचपन में खेलते थे लट्टू होता था, लट्टू जिसके नीचे की लगी होती थी उसको धागे से बांध के और कस के खेलते थे और जमीन पे गिराते थे, जो जितनी स्पीड से
0: राधा किशन जी आवाज कट रही छे था कि हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी आप
1: लट्टू वाला गेम, लट्टू वाला गेम वो बहुत अच्छा लगता था मुझे,
0: लट्टू को गेम अच्छा।

0: और भी कोई खेल जो थे साथिया के साथ खेला
1: नहीं
0: जाए?
1: बस इसके अलावा बाकी जब एक वो रुमाल छपता था पीछे, जो सब जन बैठ जाते थे पीछे रुमाल रखे फिर भागते थे, तो पकड़ के थे, अगर उसको पता लग गया तो उठा लेता था, वो हमें मारता था, अगर नहीं पता लगा तो हम उसको
0: और
1: मारते
0: देखो
1: थे।
0: रुमाल झपट्टा को जो खेल छो राधा किशन जी, मतलब मने लागे छे ये जो खेल छा ना जया रुमाल झपट्टू, यो खेल बच्चा ने मतलब कि आंख नाक कान खोलर राखबो, चारों तरफ को ध्यान राखबो, ई के लिए मतलब खेल खेल में सिखा दे छा, है ना, जो बात आज में
1: हाँ,
0: बच्चा ने
1: अगर
0: खे छा।
1: इसमें क्या शारीरिक, आप आते थे जो आपके शरीर जैसे बन जाता था।
0: और सबसे
1: मेरे
0: अच्छी
1: इसमें
0: बात यह
1: एक्सरसाइज हो
0: छे कि
1: जाती थी।
0: हाँ नहीं बच्चा ने यह आदत पड़ जा छे कि अच्छा पछाड़ी, मतलब कि चौकस रहबा की, ध्यान राखबा
1: बिल्कुल,
0: की हाँ, है ना।
1: ध्यान ध्यान केंद्रित होता था उसमें, कोई आपको ऐसे और भागना, फिर वो शारीरिक अभ्यास सारा हो जाता था। अच्छा
0: बिल्कुल, तो ये खेल मतलब खेल जो छा सच में खेल खेल में ही ध्यान जो छे उन्हें लगाबा, ध्यान केंद्रित करबो, जी के लिए आजकल कहे छे कि कक्षा लागे छे, पहली तो खेल खेल में सीख ले जा, है ना। तो अशो कोई खेल जी में थाने आज भी घणो याद आ छे, उमे मजा आ छे, कशो छे वो खेल? हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार जी,
1: नमस्कार, राम राम।
0: राम राम जी, कौन बोल रहे छे?
1: मैं मीना पारिक बोल रही हूँ, ब्रह्मपुरी से। हाँ
0: हाँ जी मीना जी बताओ।
1: जी, मैं तो देखो मारो प्रिय खेल जो थे ना, दे गुट्टा था, गुट्टा
0: अच्छा।
1: गेटोर की जो छपरा मंडी थी ना, तो उंडा का कारीगर मैंने संगमरमर का गुट्टा बना दिया।
0: अरे काई बात छे, संभाल रखे आ चुके अबार भी।
1: हाँ आज तक मार्ग नहीं मिले थे। हाँ भी मैं बोलता हूँ कि थे या बोलो कि मैं मीना को मारू छू, पासू जाके मारो नाम मीना है ना, तो
0: हाँ
1: ना गुट्टा बना जाना, चितोलिया बना जाना, तो भी मैंने बना दिया, भी आज तक मिले थे। और एक किलो था हमारी माँ चौपड़, हमारी
0: अच्छा।
1: माँ चौपड़ खेल को सिखाया, तो चौपड़ खेलता हमें लाल पीली हरी गोटियां होती और कोड़ियों से पाका ले आवे था, तो ये मारो बहुत बढ़िया। अब तो कहीं जो टाइम टाइम कौन मिलो, लेकिन फिर भी कभी कभी इसमें हो ही जावे था।
0: बिल्कुल जी, और मने लागे छे कि वे माने बचपन में ले जा छे। थकी बात से मने याद आयो कि मारा नाना जी छा, तो वे मने सिखाया जो ताश को जो खेल हो छे ना, रम्मी दुक्की तिक्की पोंजी, ये सारा जो खेल छे वे भाकी साथ, और मैं खूब खेले छा। तो मारा पिताजी कई बार मजाक में भी कहता कि थे मारी छोरी ने बिगाड़ोला, इन्हें ताश पत्तियां खेल बस सिखा रहे छो। आज नाना जी कुने लेकिन ताश जद भी देखा छा तो सच में याद आ छे वो बचपन और वहाँ की साथ खेले अवे खेल। हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार,
1: नमस्कार मैडम।
0: कौन बोल रहे थे?
1: अच्छी पन नारगढ़ की राजनीति
0: तो बताओ जी कशो खेल छे बचपन को? अच्छा
1: मैडम, माँ ये तो सबसे ज्यादा कंचियां खेले जाए जो आज भी माँ ने रखी है।
0: ओहो, तो अब बाहर खेलो चो कि कौन खेलो चो?
1: मैं तो पूरा लॉकडाउन में कंचियां ही खेले जाए मैडम।
0: नहीं लॉकडाउन की बात कौन कर रही, देखो लॉकडाउन में तो लोग बहुत सारा अच्छा काम कर लिया जो शायद ने वे अत्ता साला में करे अच्छा ने शायद अब कर पाला।
1: नहीं कंचा माँ का नाबार भी रखी जाए, और मैं तो माँ का बच्चा है साथ में, अभी छत पर भी आके खेल ले जाए शाम में।
0: आहा आनंद ही अलग आ छे, है ना।
1: हाँ
0: बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़बा खातर। तो थे भी जुड़ सको छो माँ से, कर सको छो बात बचपन का वे खास खेला की, जा की थाने आज भी आवे छे याद और मन को मोरियो नाचियो नाचियो फिरे छे। हेलो
1: हेलो, राम राम जी,
0: राम राम जी, कौन बोल रहे छे?
1: बस शंकर बोल रहे थे गोविंदगढ़ से।
0: अच्छा शंकर जी बताओ कशा खेल की बात करो ला। अच्छा
1: अभी खेल तो मैं भी छुपम छुपा ही खेले जा, पर कहे थे कि बचपन में मां से मामा को लड़कों को उम्र में थोड़ा सो बड़ो जो मैं छोटो जो, तो वो अक्सर जीत जाए जो मां से
0: अच्छा
1: समझ में को ना होती। दरअसल मामा बजिया होती जो तुम्हें ढूंढ थक जाएगा, तुम्हें आवाज लगाओ था तो वो बोले कौन सो तुम्हें आउट हो जाएगा,
0: हाँ
1: और बी की बज्जी ज्यादा होती
0: हाँ
1: तो वो आवाज लगाओ तो शंकर का ठेल उखड़े हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि तू बताए तो यही जो मैं बताऊंगा तो बड़ो आसानी से ढूंढ ले दो। और ये ढंग से जो मैंने वो आसानी से ढूंढ ले दो।
0: तो बचपन में खेल खेल में वे थाने एक सबक बता दिया कि
1: हाँ
0: अपनी जो जुबान छे उस पे नियंत्रण रखना
1: नियंत्रण
0: चाहिए।
1: रखना चाहिए।
0: शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़वा के लिए, और आज खेल की बात हो रही छे, बचपन तो याद आ ही रही छे लेकिन मने लागे छे बहुत

0: का बचपन का शक किस्सा जगी, हंसी जो चे वो रुकबा को नाम कौन ले रही क्योंकि बात ही हसी चे। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार,
1: सुनीता जलानी बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी सुनीता जी बताओ।
1: अजी ते तो थोड़ा पुराना जमा मिलेगा टेटी तेरा की बात याद आ गई। या गर्मी की छुट्टिया जो तावड़ो और उम्र फिर माँ के खेत था पापा के, तो बंडे वो एक आम को पेड़ हुआ करो जो तो खूब कह रहे आती तो बहन भाई सारा पहुंच जाता बंडे दुपहरी दुपहरी खूब कोई रोक बाड़ो उन टोक बाड़ो खेत में, तो गुल्ली डंडा को खेल खेलता।
0: अच्छा,
1: अब बचपन में तो कहीं से कि हाथ पैर भी चोखा चला चाल चा।
0: हाँ।
1: बाकर चढ़ जाता पेड़ पर, कूद जाता चढ़ जाता और कूद जाता।
0: बिल्कुल।
1: तो एक बार कहीं हो कि चढ़ कूद जाते एक साथ पांच सात सात जना कूद गए एक डाली पसु जो डाली टूट नीचे आएगी। अब ओ मसी कह रिया तो लाग ही रही थी।
0: हाँ।
1: अब चुपचाप अब डर लागे घर का को कि अब का ही करा। तो वो कह रिया ने चने तोड़ और उन जो डाली थी ना उन तो फेंक दिया डोली के पाचे।
0: हाँ।
1: और कह रिया ने चने ऊंडे खेत में खाडो खोदर गाड़ दिया।
0: अच्छा,
1: और शाणा शाणा घर आगा। अब पतो चाले थे घर कान तो
0: बिल्कुल
1: एक जगह होगी।
0: हाँ।
1: वो मैं की यार डाली कोड़े गई।
0: हाँ।
1: अब पूछे एक केक सु अब जीने जीने पिटबा से बचनो चे वा सो जाओ पहली वो तो सो जावे सुबह उठे जते तो कतरी बात ठंडी हो जावे।
0: हाँ।
1: फिर दूसरे दिन पतो लागे तो मैं तो बच गई।
0: हाँ।
1: और मारा भाई पटिया बिचारा तू तो बड़ो चो तने तो पतो चो ना कि इन कह रहा ने टूट गई जो टूट गई घर तो लिया था ना खड़ो खोदर काम ही काटे है अत्रो मतलब बचपन चो पहले को आनंद ही और चो
0: बिल्कुल
1: मोबाइल मिल जाए।
0: देखो खेल तो खेल छे लेकिन मने लागे छे बचपन की बात जो कुटाई छे ने हूँ की भी अलग ही याद छे तो बिल्कुल बचपन का खेल बचपन की कोई खेल की अशी याद जो थे साझा करबो चाहो छो माँ की साथ तो थे कर सको छो। और करबा के लिए माँ की फोन लाइन 2200-800 ई के अलावा माँ को FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM जंडे जार भी थे बता सको छो बचपन का व खास खेला की बाता जा की याद था ने आज भी। और सीटू जी बोलते हैं कि खेल खेल में कैरी रो किस्सो। बिल्कुल जी, देखो खेल खेल में ये जो किस्सा छे खेल का किस्सा खेल की बात एक अलग ही हो छे यू एहसास है ना। और ये जो बात हो रही छे मतलब मने लागे छे कि बचपन का जो दिन छे विशायद पाछा आगा। हेलो,
2: राम राम सर।
0: राम राम जी, कौन बोल रहे छे?
2: जी मैं अच्छा हूं, विद्यानगर हूं, केसी कमल बोल रहा हूं सर।
0: हाँ जी बताओ जी।
2: मैं साहब बहुत देश में आज बहुत मेहरबानी होगी आपकी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मैं तो इसमें उम्र तो मेरी 73 काल ही हुई है, मेरे काल जन्मदिन जो
0: थाने आज माँ की तरफ से बधाई।
2: और मैंने गुल्ली डंडा मालदड़ी बहुत शौक से खेलता, मालदड़ी खेलता तो कहता दोस्त ने यार देख मैं तेन थोड़ा थोड़ा खाई खिला दू लो चना भूंगा खिला दू लो तू मेरे कम मार गए जब मैं मेरे मार बाकी हो रहे तो मेरे कमर में पिछाड़ी कम मार दी तो धीरे से मार दिया तेने मैं काई खिला दूंगा और तो यार उनके पास मतलब और गिल्ली डंडा भी खेलता है ना तो मैं एक जना खेले तो देख मेरी जब भी गिल्ली आओ ना तो चढ़ार पटक दी है कैच मत कर दिए जो मैं आउट हो जाऊ लो मेरे मतलब खेल में बहुत शौक जो तो मेरे खूब बढ़ना चाहिए जो तू खड़ा बिना पकड़ ले लो ना कैच कर ले लो तो मैं आउट हो जाऊ लो तो
0: बिल्कुल। देखो मने लागे छे कि खेल खेल में रूठा ने मनाबा की जो कला छे वे भी खेल सिखा दिया है ना। और खेल बहुत सारी चीज़ा से अच्छा है। पंकज जी कहे छे कि आज तो थे पूरा बचपन ही याद दिला दियो काई करा दिमाग ही राखे छे दोबारा आ सके अशो तो हो ही कौन सके। और सुशीला दत्ता जी कहे छे कि भाई मैं तो गुड्डा गुड्डी को खेल खेले छा और पापा मम्मी बनर खेले छा और ये बात पर झगड़ता कि नहीं पापा सिगरेट पिएला कि बीड़ी पिएला हाँ सोचर हसी आ छे चूड़िया का जो टूटा टुकड़ा हो छा वहां ने बीनर और गड्ढा में खजानू बनाओ छा फिर मिट्टी डाल

0: छुपा छा गुट्टा खेल अच्छा। और देखियो कत्तो सादो कत्तो मतलब भोलो प्यारो बचपन छा कि चूड़ी का टुकड़ा वहाँ ने छुपा दिया और वे खजानो बन गयो है ना। और वो खजानो अशोक जी ने जब ढूंढ्या तो अतरी खुशी मिली, अतरी खुशी मिली कि मने लागे छे कि शायद और मतलब कहीं भी चीज़ से आज सच में खजानो मिल जाए तो भी शायद अशी कौन मिले ली। प्रीति अग्रवाल जी कहते हैं कि मारी दादी के पास अलमारी में चौपड़ को खेल पड़ो यो देखियो छे, एक दो बार खेलियो भी पर समझ कौन आयो क्योंकि कपड़े पे बने छो, 16-16 गोटियां होती थी और कौड़ियों से खेला जाता था, तो आज थे उनकी याद दिला दिया। बिल्कुल जी, देखो कहीं छे कि मने लागे छे बचपन एक अशो पल की बस बचपन की याद और कमलेश कोठिया जी कहते हैं कि बचपन के दिन तो वो गोल्डन दिन थे जो दोबारा नहीं आएंगे। देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि बचपन का जो दिन छा वे गोल्डन दिन छा लेकिन दोबारा को ना आला। लेकिन मने लागे छे कि मैं सब वशा बच्चा रहा जाने कह सके छे कि बहुत खुश नसीब जो अशो बचपन जिया कि उनकी आज याद भी माँ का चेहरा पर मुस्कुराहट ले जाए, दिल में वाई उमंग रह जाए, मैं कतरा मजा से कत्तो माँ कने टाइम हो चो और मैं कतरा सारा खेल खेलिया छे, माँ कने कत्ता सारा दोस्त हो छा, अतो बड़ो परिवार और मैं बहुत मजा से अति सारी जगह हो छी। आज अगर मैं देखा तो मने लगे छे कोड़े ना कोड़े टाबरा को दोष कोने, मोबाइल तो मैं भी वहाँ का हाथ में थमाया, साथ ही साथ वहाँ की दिनचर्या भी अशी कर दिया कि सुवारी से शाम तक मन लागे छे आधा जीवन जो छे वो तो वहाँ को बेचारा टाबरा को जो छे ना आबा जाबा मैं कदे ट्यूशन जा रहा छे कदे स्कूल जा रहा छे अति अति लंबी दूरी पे, आधो जीवन तो वहाँ में ही कट जा छे कि अंडे आया फिर वनडे गया, अंडे आया वनडे गया, आधा तो वे वहीं ही थक जा छे। तो मने लगे छे कोड़े ने कोड़े माँ की भी कहीं ना कहीं कमी छे। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार,
1: प्रमोद कुमार केड़िया बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी प्रमोद जी बताओ।
1: हाँ जी, जय राम जी की।
0: जय राम जी की, बताओ बचपन का कशा खेल। हेलो प्रमोद जी से संपर्क हो कौन पायो और मने लागे छे कि प्रमोद जी ने एक बार वहाँ को जो कनेक्शन या जी से भी फिर संपर्क करे छे देखनो पड़ेला, क्योंकि अशो पहले भी हो सको कि प्रमोद जी को जो संपर्क छे वो आसानी से होवे कोने। हेलो,
2: राम राम सा।
0: राम राम जी, कौन बोल रहे छे?
2: रेखा झावर।
0: रेखा जी कोड़े से बोल रहे छो?
2: गोपालपुरा न्यू लाइट कॉलोनी।
0: अच्छा, तो रेखा जी बताओ बचपन का कशा खेल छे जाने याद आज करोला?
2: बचपन में कोना कोना खेला था।
0: अच्छा, क्या?
2: चार पांच बच्चा इकट्ठा होता, फिर चार कोना ले लेता, फिर अटीना से बटीना भाग कोना चेंज करना।
0: अच्छा,
2: जो बीच में बच्चों खड़े है बिना खुद ने कोनो लेनो है, पछे जो छोड़ जावे वो वापस दाम ले।
0: अच्छा, मजेदार सो खेल छो जो तो थे बताया माने।
2: हाँ।
0: और
2: गेंद गुट्टा खेला था। अच्छा, सभी कंकर उठाता गेंद लेता और खेलता।
0: हाँ बिल्कुल, मतलब देखो ज्यादा संसाधन की जरूरत कौन सी है ना, खेल में बना ले छा और बस खेल ले छा, क्योंकि इच्छा थी खेल बाकी और समय भी छुमा कने कि मैं खेल सके छा। अशो बिल्कुल जी ने कहे छे ना कि हाँ मस्त बेफिक्र जो बचपन छो वो बचपन में सब जिया छा, तो ई के लिए मने लागे छे भगवान को भी घणो घणो आभार, घणो घणो शुक्रिया। हेलो,
3: हाँ नमस्ते।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे छे?
3: मैं गुड्डू बोल रहा हूं, खजाना वाले रास्ते
0: में। हाँ जी गुड्डू जी बताओ।
3: मैडम हमारे मगर मैं हिंदी बोल सकता हूँ क्या, बोलू क्या?
0: हाँ बिल्कुल बोलो जी।
3: मैं कह रहा हूँ पहले हम लोग बचपन में अंतरी पंचरी खेला करते थे।
0: अच्छा, क्या खेला जा?
3: हमें अंतरी पंचरी में क्या होता था कि एक दूसरे की कमर पे हाथ फंसा के पीछे से एक को उठाना फिर दूसरे को उठाना।
0: अच्छा,
3: हाँ इस तरीके का खेला करते थे। कभी कभी तो भाई इतने झुकते झुकते झुकते झुकते पीछे वाले को आगे की तरफ फेंक दिया करते थे।
0: तो हमारी बात सुनो, अंचरी पंचरी की जगह इन्हें पहलवानी या धोबी पछाड़ भी तो कह सको जो।
3: और ऐसे ये घोड़ा पछाड़ भी खिला करते थे, तो लातों से एक दूसरे को मारना और इस तरीके से बहुत बचपन में खिला। और आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये पता चल रहा है कि भाई ऐसा खेल खेल मतलब हम बचपन में कभी खेले थे।
0: बिल्कुल, और वो कद तो बढ़िया समय जो है ना,
3: बहुत सुंदर।
0: तो बिल्कुल गुड्डू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो बहुत सारा खेला की बात हुई है, लेकिन एक खेल मने लागे छे बहुत सारा जना बत खेले अभी होला लेकिन बोलिया कोने, एक वो खेल छो कि बाबा जी कहाँ जा रहे हो, वो खेल कुन कुन खेलियो छे, वो खेल का भी बता सको छो। और भी कोई खेल जो ते खेलिया हो तो कर सको छो, वो खेल की याद साझा कर सको छो वहाँ की साथ गरबा के लिए। वहाँ की फोन लाइन 2200 800, और जुड़ सको छो कर सको छो बचपन का खेल की बात।
4: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
5: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है,
4: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
5: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
6: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131 132 आतिश मार्केट।
7: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM शो चाल रहे चटकीलो राजस्थान, और चटकीलो राजस्थान में हमारी जान आज बात हो रही है वे खेल, बचपन का खेल जाक वो कोई कौन है मेल। तो बचपन का अच्छा खेल जो थे खेलिया हो और आज भी वहाँ की याद मन को मोरियो नचा दे वो कशो छे। हेलो, यहाँ के साथ छूट गो माँ को संपर्क, लेकिन थे जुड़ सको जो माँ के साथ माँ की फोन लाइन 2200 800 इनके अलावा माँ को FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM और इन पे जुड़ बता सको छो कि वे बचपन का खेल जाकी याद आज भी मन को मोरियो जो छे उन्हें नचा दे छे। मन नया लागे छे कि बस वे बचपन का दिन पाछा आ जावे और वे खेल खेल बने माने फिर से एक मौको मिल जावे। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM चटकीलो राजस्थान, और आप देखा छा कि कौन छे जो जुड़ गा वहाँ के साथ।
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ जी, राम राम साहब।
0: राम राम जी, कौन बोल रहे छे?
1: मैं सोडाला से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, काई नाम छे?
1: मैं अमर बोल रही हूँ।
0: अच्छा, तो अमर जी बताओ बचपन को वो कशो खेल छो जो थे खेले अच्छा।
1: आज मैं तो दिन कब तात बनाओ ना माचिस का।
0: हाँ,
1: माचिस का तात खेला था ना।
0: हम्म,
1: जो कहते पहली माला यार दोस्त मिलर या घूम पर निकल जाओ थे गर्मी की छुट्टिया में।
0: अच्छा।
1: जो टचराम से वो माचिस का तास भीण भीण माना फाड़ फाड़ है ना, माचिस का तास खेला करा था बड़ा छाया दे कर थोड़ा पेड़ की छाया में।
0: हम्म,
1: तो खेला करा जाओ था बड़ा मजा आवा था।
0: अच्छा, तो मजा तो आछा, लेकिन जया थे खेरिया चो की थे आयला बायला के साथ चलिया जा आछा, तो घर का से पूछा जा आछा की यहाँ ही चलिया जा आछा?
1: नहीं नहीं, वहाँ से पूछा जा आछा तो माँ की हत्ती पिटाई करा था कि बस माँ का जो ताश खेल भाई भूल जा, तो माँ जड़ा और दे हो जा माने ताता ने।
0: अच्छा, तो फिर मारी बात सुनो, तो थे घर का से छुप छुप जा आछा?
1: हाँ, छुप छुप ही जाया करा था, फिर शाम न आया करा था, सुबह का निकलड़ा या देख लो कोई 5-6 बज जाओ जब मान आता था, ना रोटी को पतो ना पानी को पतो, जो भूखा प्यासा डोलता है पर है पार्क में मगर अंडे पार्क हुआ करो जो एक बड़ो सारो। अब तो कहे थे उन्हें छोटो कर दिया, अब तो है ना जो पार्क के नीचे पेड़ के नीचे बैठर दिन भर रुदम करता रही होता चुपन चुपा, और बस टोलिया है और कबड्डी भी खेलिया करे था।
0: खेल तो थे खेला था, लेकिन अगर वे ही खेल आया छुप छुप पर था का टावर जावे सुवारी से शाम, तो थे काई करोला वहाँ की साथ। तो बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो जुड़िया अमर जी वहाँ की साथ जो खया अपना मन की बात, थे भी कह सको छो वे बचपन का खेल जहाँ से जुड़ी कोई खास बात अगर हो था का मन में, था कोई याद था की साथ।

0: एक नई खुशी।
1: जे डी एल आई है भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, वसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी कला, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: ए सुन रहा हो चटकीलो राजस्थान 100.3 FM माला काई तो खास छे अरे का।

भाई रसियो हटीलो हो न हो, लेकिन जो हटीलो हो छे वो होवे छे समय। जो खे छे कि भाई घड़ी की सुइयां कौन टिकेली कोई के भी लिए, तो घड़ी की सुइयां टिकेली कौन, और वे खैरी छे कि अब वक्त छे लेबा को टाटा बाय बाय खैबा को विदा। तो बस मुस्कुराइए और किसी के मुस्कुराने की वजह बनिए। सायोनारा।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण

0: अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

राम और श्याम फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। जब याद किसी की आती है इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज़ है, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं।

0: मदन मोहन का सर्वदिकिया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी जब याद किसी की आती है, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी का लिखा यह नगमा आपने सुना फिल्म शिकार से।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया राजा और रंग फिल्म से। आनंद बख्शी की रचना है।

0: फिल्म वासना मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजें साहिर लुधियानवी के बोल चित्रगुप्त का संगीत।
1: ये पर्वतों के दार।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: सुना लता मंगेशकर आशा भोसले का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे
2: नहीं ते
1: नहीं ते

मर्यादा फिल्म का दो गाना आपने सुना किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत की रचना की आनंद बख्शी ने। आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें, साहिल लुधियानवी की बोल।

0: आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे थे इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: सुरीला सफर इस कार्यक्रम के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ किया। ये ट्रांसमीटर एक बड़े क्षेत्रफल में लोगों तक रेडियो की पहुंच को सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इस ट्रांसमीटर के बनने से और अधिक लोग रेडियो से जुड़ सकेंगे। उन्होंने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी के व्यापक प्रसारण नेटवर्क उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल सूत्र पर काम करने को कहा, जिससे स्थानीय कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स को अधिक से अधिक मौका और प्रोत्साहन मिले।
2: हाइपर लोकल डिजिटल फर्स्ट, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है और जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, जब चाहे अपनी खुद की ऐप बनाएं। जिस तरीके से लोकल न्यूज, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, गांव के, कस्बे के, नगर के कलाकारों को, वहाँ के क्रिएटर्स को, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया तक पहुँचने की, संस्कृति को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। इस आधार पे अगले 1000 दिनों में अच्छा एक्शन प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें।
1: रेलवे परियोजनाओं का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि प्रदेश में रेलवे का तेजी से विस्तार हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, इनमें से 15 का काम पूरा हो चुका है। श्री वैष्णव ने इस अवसर पर जयपुर अजमेर दरभंगा ट्रेन को जल्द ही नियमित करने की घोषणा की। उन्होंने जयपुर में AI डेटा सेंटर और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाने का भी ऐलान किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसी संस्थाएं अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई एक अत्यंत आवश्यक सेवा है। श्री जोशी ने प्रसारण में सत्यता और प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि सत्य को बिना बढ़ा चढ़ाकर पेश किए संतुलित रूप में समाज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार अध्यक्ष ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के युवा अधिकारियों के साथ संवाद किया। इसके बाद श्री वैष्णव MNIT पहुंचे। वहां उन्होंने क्वांटम AI और सेमीकंडक्टर मेकर्स लैब का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव का दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प

सम्मेलन में शिरकत करने का कार्यक्रम है। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों का उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। राजस्थान पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पिछले 6 दिनों में 50,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. बी.एल. मीणा ने बताया कि अवैध फिल्म नंबर प्लेट हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। अभियान के 6 दिन रिकॉर्ड 10,825 चालान बनाए गए। प्रदेश में आज जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

श्रोताओ, गांव की जो दिनचर्या होती है वो बड़ी गजब होती है। तो गांव में या अभी आपकी दिनचर्या क्या है? अगर जब कभी आप गांव में थे तो उसे किस तरह से अब के समय से आप जो है मैच कर सकते हैं कि अब शहरों में जो सोना उठना बैठना उसका समय और गांव में जो दिनचर्या होती थी वो भोर के समय, जी हाँ, पनघट पर बहुत सारी पनिहारिने नज़र आ जाएंगी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन की भाग दौड़ में मन आज भी अपने गाँव, अपने बचपन और उन अनमोल रिश्तों में बसा हुआ है, जहाँ बचपन की यादें, गाँव की मिट्टी, बिछड़े साथी और पुरानी यादें आज भी दिल में घर बनाए हुए हैं। और बहुत सारे गीत भी इन्होंने बताए हैं, हमें सुझाए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सभी को प्रणाम, तो आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। विविध भारती के सुरीले सफर में जहां बचपन फिर यादों के सहारे लौट आया है, वो आज़ादी, वो स्वच्छंदता अब लौट के नहीं आने वाली। जब मेघ बरसते थे, भीगते निकल जाते थे और साथियों के साथ छपाकछई खेलते, बहते धारे में कागज की नाव चलाते, दिन भर बिना भूख प्यास की चिंता के नदी के पार जाकर खेतों से खरबूजे चुराया करते। एक श्रोता और लिखते हैं कि आज की इबारत केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अतीत की स्मृतियों और आधुनिक जीवन के अकेलेपन का एक बेहद खूबसूरत और मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। लेखक, इन्होंने लिखा है कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ शहरी चकाचौंध के पीछे छिपे खालीपन और ग्रामीण जीवन की निश्चलता के बीच द्वंद को हमने उभारा है। आखिरी पंक्तियां, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है, ये दर्शाती हैं कि भले ही भौतिक रूप से इंसान शहर में कैद हो, लेकिन उसका मन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है।

0: एक नई खुशी। जेडी लाई है भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, वसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुल ओरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी क्लब, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और 1 मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
2: शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों शहर में, वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गांव दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां शहर आधुनिकता, गति और सुविधाओं का केंद्र है, वहीं गांव सादगी, परंपरा और प्रकृति के करीब होते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसा था जो आप आज भी आपकी यादों में बसा है, और क्या कुछ ऐसी चीज है जो आपकी गांव की यादगार चीज है।

तो अगर आपने फिल्म देखी है गंगा जमुना तो आप ज़रूर बताइए, और आपको याद ही होगा तो इनका बाला कहाँ है, कहाँ गुमा है, आप क्या ढूंढ सकते हैं, तो हमें ज़रूर बताइए अगर आपको मिला हो। वैसे गांव में भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप पनघट पर गए होंगे, कोई चीज़ या कहीं गए होंगे, कुछ खो गई होगी, तो कुछ यादें अगर इसे मिली जुली आप साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और गाँव की बहुत सारी खासियत होती है श्रोताओं कि गाँव में जो यादें हैं, रहट का पानी है, या अगर आपको याद हो कहीं दूर रेडियो में कोई गीत बजता हो जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, या कोई फिल्म ऐसी जो आपने गांव के थिएटर में देखी, क्योंकि गांव में पहले थिएटर कम हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इस गीत से पहले सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत आपने सुना जो जीना तमान पर फिल्माया गया, और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार आपको बताने हैं। एक और श्रोता ने लिखा, यादें अजीब होती हैं, एक तो बिन बुलाए आ जाती हैं और आ जाएं तो सांस थमने सी लगती है। किसी पुरानी फोटो को देखो जो धुंधली पड़ गई, लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी याद हमेशा ताज़ी मिलेगी। कुछ यादें शब्द मांगती हैं तो कुछ यादें खामोशी, कुछ आवाज़ें अब भी दुनिया में नहीं, पर कभी कभी लगता है कि कंधे पर हाथ रख कर कह रही हूँ अपना ध्यान रखना, वो हाथ जो अब कंधे पर नहीं पर थकान में सहारा बन जाते हैं। यादें हमें एक ही समय में दो जगह रख देती हैं, शरीर को वर्तमान में और दिल को किसी सुनहरे अतीत में। दुख इस बात का नहीं कि वक्त बदल गया, दुख इस बात का कि वो लम्हे अब दोबारा नहीं जी सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक बार फिर काफ़ी लंबा गद्यांश सामने आया है और साथ में लाया है वो बचपन की यादें जो कभी मन को सुकून देती, जब पनघट, पगडंडी, खेत, खलिहान, नदी, झरने, रेत पर उकेरी तस्वीरें सब अपने से लगते थे और हम खुशियों के से पल भरे पल जीते थे। लेकिन जब ये छोड़ शहर की ओर चले तो वक्त की लाठी ने धीरे से सब कुछ छीन लिया और दे दिया खालीपन, बस बाकी रह गया तो सुनहरी यादों का गांव, मन के भीतर एक

सुकून है। मैं तो जादूगर की भी बहुत सारी यादें होंगी श्रोता, आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसी यादें तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं कि जादूगर आया करते थे गांव में।

प्रदीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से, और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भूर भय पनघट पर, अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थीं, अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी अब वो पक्की सड़क बन गई है, मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, डाकिये की साइकिल की घंटी मूक हो गई है, डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज और ईमेल ने ले लिया है, गाँव के हरे भरे जंगल जैसे माहौल को शहर के कॉन्क्रीट के जंगलों ने उजाड़ दिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, इस गीत को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में विविध भारती के गानों की बौछार हो रही है, ये कहीं न कहीं हमारे मन को सुकून और दिल को ठंडक पहुंचा रही है, सचमुच ही विविध भारती का ये सुरीला सफर हम श्रोताओं को एक साथ जोड़ता है और जो कि इस कार्यक्रम को रंगारंग दिलचस्प बनाता है, और इन्होंने विविध भारती का शुक्रिया किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और श्रोताओं कार्यक्रम तो आपके शामिल होने से ही बनता है। एक श्रोता और लिखती हैं कि गांव की अनमोल यादें ताज़ा हो रही हैं इस इबारत में, गांव का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का किनारा, नैया की सफर, सौंधी मिट्टी की खुशबू, शुद्ध हवा की शीतल लहरें, अनुपम सौंदर्य, सूर्यास्त, गांव का मेला, खेल खिलौने, मौज मस्ती, गांव में गुजरी बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगी हैं, उसी की तस्वीर लेकर आ रहा है ये सुरीला सफर, और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्द हो सकते हैं रात दस तक यादें, भोर पनघट, सौंधी रोटी, खिलौने, रेत की नाव, जी हाँ, और गीत भी बताएं। नाव की अगर कोई सैर आपको याद हो

नया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें। श्रोताओ, गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है, यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं, बगीचे से आम चुरा कर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है आपके गांव की। रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। श्रोताओ, क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफ़र किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है

शहरों में बीता आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं, तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू वाली सफर का इंतजार है। तो जी हाँ, ये सफर जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये जरूर बताइए।

ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का, और आप कलाकार बता दें, एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफ़र सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताज़ा हो गईं, और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियाँ, वो आंगन में सब कुछ समेटना, और रोज़गार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोज़गार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोज़गार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज़्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद

गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है। गांव की यादें, बचपन, बिछड़न, शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भये पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीजें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है?

बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से। सजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही ना हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे, गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का गांव की जिंदगी क्या होती है, वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे, बहुत मज़ा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीज़ें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गाँव के चारों तरफ पहाड़ है, जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गाँव का नाम ठोकर है। मेरे गाँव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गांव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं, जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफ़र है, अक्सर लोग गाँव छोड़कर शहर में रहने हैं, लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए, आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन, हमारे गाँव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था, बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं, आपने रुला दिया, वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही हैं, ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि यह हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूँ, उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आठ गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर भय पनघट पे, जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए, हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं।

ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है, ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है, बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है, जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन के जो चटपटी चीज़ें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे, वो कागज़ की पुड़िया के समान बांध के

ना वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था। आवाज़ सुनते ही सभी साथी दौड़कर वहां पहुंचकर गाना सुना करते थे।

0: किया बाबू।
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी।

ये गीत आप सुन रहे थे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोता पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारी श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पनघट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे, यादें अजीब चीज होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसी उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं, और कलाकार

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक। और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांदूद जो नर्मदा नदी पर बसा है वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया। मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ की मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक से।

एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

अरुण गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव ज़रूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीज़ों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफ़र सम्पन्न होता है।

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना।

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल। थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

किसने? मैंने? नहीं तो

खेल हमारे नज़रिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबाराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
2: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
3: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
3: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
4: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इसे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट

0: उसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेस में एंडर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: आर का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, एम जी हर्षमत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म पालकी का ये गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: शारदा की आवाज में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है, और श्रोताओ यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार, और आप सुनिए ये नगमा।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी,
1: सब लेकर आए हैं।
2: तो
1: आज देखिए खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किन का है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर गेम ज़्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज़्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
2: जी बिल्कुल।
1: या माता पिता हैं किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं।
2: आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने पर ज़रा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाते हैं?
1: इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
2: भीमव्वा डोडा बलप्पा शिलेक्या थारा जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
2: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
1: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब अगर कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहाँ जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज़्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं।
2: तो आपके इस पर क्या विचार हैं कि मतलब खुश रहना ज़रूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
1: जी,
2: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के उसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
1: जी?
2: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
1: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे।
2: जी हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहाँ की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानियों को अच्छे से समझाया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना,
0: हाँ
1: उस तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफ़र की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियाँ बहुत

0: यह तो वहाँ लकड़ी की कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं, और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी, संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमावा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है,
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ के लोग परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमावा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और ख़तरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज़ उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सकें, ताकि जो तोगलू गोम्बे याता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी ज़रूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है,
0: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके दर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्यौहार हैं, जो भी परंपरा हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयां करती है।
1: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले कैथारा को भारत का 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी,
0: और एक गीत सुन लें अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में ज़रूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और
1: बिल्कुल
0: ख़ास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि
1: हाँ
0: किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियाँ होती थी ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो
1: हाँ
0: डांस है वो देखने में बड़ा मज़ा
1: बिल्कुल।
0: आता
1: अजीब अजीब सी आवाज़ें भी निकालते हैं ना।
0: हाँ
1: तो हमारी एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज़ और बड़े बड़े बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसे आपने बोला वो बोल रही
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है, तो बच्चों को ज़रूर वहाँ लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज़ होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है।
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं। और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है, तो उन्हें भी इस चीज़ के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने की खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज़्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज़्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए। क्योंकि
1: बिल्कुल
0: कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित
1: बिल्कुल। वो
0: करना
1: जिस
0: बहुत
1: तरीके
0: ज़रूरी
1: खेल
0: है।
1: में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए।
0: जी
1: और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है,
1: बिल्कुल
0: ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीज़ें बच्चों में आ सकें। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है, इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना ज़रूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं। और यही वो समय होता है आरती, जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा।
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं, या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी
1: बिल्कुल,
0: खेले होंगे,
1: दौड़ भाग है,
0: भाग
1: साइकिल
0: दौड़ के,
1: चलाना है, बहुत
0: हाँ
1: सारी चीज़ें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: लुका छिपी भी
1: लुका छिपी
0: खेलते थे,
1: खेलते थे।
0: और बस

0: पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा के हाँ। सतोलिया बना के खेला और कपड़े की पुराने कपड़े की एक गेंद बना ली उससे मारकर खेल रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत से ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर। तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज़्यादा अवरुद्ध भी होता है और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना।
0: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें फिर बात को आगे बढ़ाएंगे।

बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि रहती है। तो देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना ज़रूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही हैं कि खेल हर चीज़ में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं।

0: और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं, और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने,
0: बिल्कुल सही बात है। और इस साल जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं, और खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई समझाई भी जा सकती हैं ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं
0: जी,
1: बहुत सी ऐसी तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं, ताकि अब उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीज़ें बच्चों में विकसित करते हैं खेल, और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है, हर बार बच्चे के साथ कोई जाएगी जरूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले, तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे, माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल
0: है।
1: और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं, जब वो साथ मिलकर खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत कुछ।
0: अभी जैसे बारिश का जब मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला कैसे जाता है, उनके साथ बैठ कर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया, तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है, बस
1: बिल्कुल
0: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: और हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए, और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन एक इतना समय ज़रूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल, जब बच्चों को धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता
1: बिल्कुल
0: है।
1: और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता है कभी कभी,
0: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो चलो गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं, बिल्कुल
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहाँ बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज़्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देखने के बारे में हम समझ नहीं साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे। कहते हैं ना कि हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज़ है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद क्या है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव। तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूँ या मैं सही हूँ, वो सिर्फ दूसरों की नज़र से खुद को देखने लगता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं तो वहां हमें बहुत सारे एक लाइक मिले।
1: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
0: वो लाइक कितने बढ़ गए,
1: वो उसी में लगे रहते हैं।
0: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीज़ों से नहीं मिलती। ये चीज़ हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें ज़रूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है। बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं, कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज़ को उस पर डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो चीज़ें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े पलों का इंतज़ार करते रहते हैं ना कि चलो ये त्यौहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते।
0: बिल्कुल,
1: तो हर जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
0: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहाँ जाएंगे तब खुश होंगे, ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रही हैं,
1: जीवन है कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नज़र से नहीं जीना, हमें अपनी नज़र से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम

0: असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तकिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज़्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की,
0: क्या बात
1: क्योंकि
0: है।
1: मन से किए गए काम खुश करते हैं।
0: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा
1: एक
0: ये
1: प्यारा सा
0: प्यारा
1: गीत।
0: सा गाना।

0: बहुत मीठा बहुत सुरीला गीत हमने सुना और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर. हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना. जी
1: बिल्कुल. और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें. क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है. खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत ज़रूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए. मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज़ है हम खुश हैं इसमें, वो चीज़ होनी चाहिए.
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज़्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे.
1: बिल्कुल.
0: और देखिए, अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ. हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं. सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है. जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं, वहाँ पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फ़ोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं. और इस बेहतरीन दिखने की वहाँ पर होड़ सी मची हुई है. खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है. बहुत सही बात लिखी है.
1: बहुत सही बात. और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है. असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं. क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे. कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की,
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है.
1: बिल्कुल.
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं. सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है, और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता. रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है, और यही सच्ची खुशी है.
1: बिल्कुल. एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है. जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है, तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है. बहुत सही बात कही उन्होंने.
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है. जहाँ वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है.
1: बिल्कुल
0: सही बात है.
1: बिल्कुल. एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं. खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है, क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है. लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है, ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी. असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है. सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है. बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने.
0: और भी संदेश हैं.
1: तो एक और जो मैच होता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अपितु उसके

0: पोषक भी है। फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
1: ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं, कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने की, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में. एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को. जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है. दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है. इसीलिए खुश दिखने से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, ज़िंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो.
1: बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने. और इसी के साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए. खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते. दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता. और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूँ, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूँ तो आप सभी शक्की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
0: बिल्कुल सही बात है. और अगर आपको विविध भारती सुनकर

0: खुशी मिलती है, तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
1: बहुत जरूरी,
0: और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है, और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है हमें, कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ ली हो रही थी, बस माचिस की तीली लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक।
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती
1: हैं, हेयर पिन, चाबी ले लेता है कोई, कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुँचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक, ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि एक वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना
0: जी,
1: जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा हम अगर में शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुँचाएगा।
0: देखो जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकाल कर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे ज़बरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है, तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीज़ें, हेयर पिन, इनका तो कभी ना करें।
1: आप इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीज़ें आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना ये पुराने जो होते हैं वो बड्स, उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये सब चीज़ें आप ना प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए, और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज़ ही आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुँचाएगा ही।
0: क्योंकि जब इस चीज़ का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फ़ोन नहीं लगाना है तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज़ आवाज़ में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज़ या अन्य कोई आपको आवाज़ भी दे रहा है तो आपका ज़रूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना
1: और
0: है।
1: सबसे बड़ी चीज़ है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं आप, उसको बहुत ज़रूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज़्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज़ को कि आपको बाकी आवाज़ें ना आए। और दूसरी चीज़, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर बाद आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना कान आपका ऐसे पर्दे पर उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, कृपया करके अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चारो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज़ आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीज़ें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, उस चीज़ से उसकी जाँच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जाँच होती है वो भी ज़रूर करवाइए।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें, और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज़ ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे। बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं है आज के दिन। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: हिलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम मैं शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की? लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेटों में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो वो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना?
1: जी, इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम
1: जी। नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: किंग ऑफ फैशन इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिविजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात तो मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे। बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं,
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: हमारे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर, तो ज्यादातर चलता नहीं था हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: फुटबॉल तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या?
1: खेलने की बहुत चाहत थी, जिम्मेदारी हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर के आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए, और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है, वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। वादा

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब
1: जी। और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है
1: जी, जी,
0: पसीना आता है, परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं? आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी, हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते है ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, काटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी, लेकिन बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के जरिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगी लाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगी लाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं
1: जी। काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी, भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं हम किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने विकेट, कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आज मुझे खुदा गावा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, आपको याद करूँ पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ, इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी चलता था मैडम।
0: अच्छा, कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे कि हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है, कि क्या वो खेला करते थे? हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है, बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ, जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम, क्या बोलते सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने छोड़ दिया, यानी 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा, छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था।
0: हाँ,
1: पहले से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने।
0: क्या
1: फिर आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस फ्रेंड में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गया आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गया आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो सपना

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और विविध भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं। आपका झमकर सुनकर मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी, और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने नहीं देती थी दीदी,
0: क्यों?
1: लाड़ती थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम था खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम, नमस्कार। विविध भारती
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर में, बार्शी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या
1: बात,
0: हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब पर अच्छा लगता है, आदमी नई चालू करे ना तुम कार्यक्रम, सुहाना सब पर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश, गीत गाते हैं और अच्छे कार्यक्रम है
0: वो। आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता हूँ।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: बिल्कुल वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनवाए मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम धेमाजी असम से विमल बसुंतर बोलो। मैम
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करते हो, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे। तो
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम,
0: हाँ
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता है।
0: अच्छा, समय रहते घर पहुँच जाते हो?
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोड़ा इसे करते रहता है, और सिलाई का अलावा दूसरा

0: सब में रखता हूँ, दुकान और दूसरा है।
1: हाँ, और विविध भारती के लिए कब समय निकालती हो?
0: जी मैम, विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाए मैम।
1: कैसा महसूस कर रहे हो?
0: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
1: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
0: जी मैम, आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है। फिर आप लोग से आज बातचीत हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
1: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
0: जी मैम, हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी,
1: बिल्कुल देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में, तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है, हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा मैं आपसे दो या तीन लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है कैसा खेल है इसके बारे में बताइए, तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह की का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए।
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था। और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे, तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और खेलने का मन होता है।
0: लेकिन जी मैम आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल सिमट करके रह गए हैं बच्चे, लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है, व्यक्तित्व होती है, वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है, चलिए सुनते ही ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसमटारी बात कर रहा है, रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: आप कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और साई का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो साई का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल, असम की चाय, कौन सी चाय, खुशबूदार पत्तियाँ?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है, काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं, हमारा साई का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है, तो बताइए। चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी, फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ, तो दीपक जी और क्या करते हैं, इसके अलावा कोई और शौक है आपके?
1: मैं खेती किसानी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री, तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था आपका?
1: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है जरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो।
1: जी
0: है ना, कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288। हमारा दूसरा नंबर 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है। तब
1: भूल गया सब कुछ।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा। वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

दीवाना। मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो।

0: चाय के कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना

प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना

0: और अब छायागीत कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली। प्रायोजक हैं देवदर्शन ओवरसीज़।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम तराने नए पुराने में। मैं हूं विधि जैन, नमस्कार।

हम सुन रहे थे द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का यह गीत अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव वर्मन के संगीत के साथ।

द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से सुन रहे थे हम यह गीत, अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ में, समीर के बोल और ए आर रहमान के संगीत के साथ।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हम सुन रहे थे गीत द बर्निंग ट्रेन फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ें हैं, साहिर लुधियानवी के हैं बोल और राहुल देववर्मन का है संगीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती हर पल साथ हर पल खास।
4: बेचारा
5: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
5: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
6: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
5: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
5: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
7: तराने नए पुराने,
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने में दिल का रिश्ता फिल्म से यह गीत। अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण की आवाजें, समीर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत है।

हम सुन रहे थे ये गीत कुर्बानी फिल्म से कंचन मनहर उदास और आनंद की आवाज़ में इंदिवर ने के इसके बोल लिखे हैं। कार्यक्रम सुन रहे हैं हम तराने नए पुराने और अब हम चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम तराने नए पुराने प्रस्तुत होगा समाचार के बाद।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज MT सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर

0: लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमरीकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी से टिबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम तराने नए पुराने में।
4: तराने नए पुराने।
3: आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने में यह गीत, जिसे जो है जख्म फिल्म से। अलका याग्निक इसकी गायिका है, आनंद बख्शी के बोल हैं, MM करीम का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम है तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने का अगला गीत फिल्म सावन को आने दो। यशुदास की आवाज़ में फोक जामी ने इसे लिखा है और राज कमल ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे रिफ्यूजी फिल्म का यह गीत सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में जावेद अख्तर के बोल अनु मलिक के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत स्वामी फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, अमित खन्ना के हैं बोल और राजेश रोशन का है संगीत। यह कार्यक्रम तराने नए पुराने का आज का अंतिम गीत है।

0: और कार्यक्रम तराने नए पुराने समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: तराने नए पुराने।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल के मंत्र के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलेवर में बदलाव का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, दो सीटें भाजपा और एक कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। और राज्य में कल से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

0: और भावी कार्य योजनाओं को पेश किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, रेल तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने इस समय इन संस्थानों में परिवर्तन पर भी जोर दिया। श्री वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल मंत्र के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने की बात की।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने रेल विकास के लिए पुरजोर प्रयास किए हैं।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: इसके बाद श्री वैष्णव ने MNIT में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI लैब विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने प्रदेश भाजपा मुख्यालय से प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। PBM अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले की गहन जानकारी लेने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बीकानेर पहुंचे। श्री खींवसर ने चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही प्रभावित प्रसूताओं के परिजनों से बात कर बेहतर इलाज करवाने का आश्वासन दिया। चिकित्सा मंत्री ने मीडिया से कहा कि मामले की विस्तृत जांच करवाई जा रही है, रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अस्पताल परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में जैविक उर्वरक निर्माण और भंडारण संयंत्र में हो रही गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा किया। श्री मीणा अपनी टीम के साथ कानोता स्थित एक फैक्ट्री का जायजा लेने पहुंचे, जहां निर्धारित मानकों के विपरीत बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे थे। कृषि मंत्री ने इन उर्वरकों की पैकेजिंग और लेबल पर अंकित जानकारियों को भ्रामक बताया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कच्चे माल का उचित भंडारण और नहीं किया जा रहा था। मीडिया से बातचीत में श्री मीणा ने बताया कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। बुरी तरह से बेरहमी किसानों का लूटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। खरीद के उसकी उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी भूमि खराब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, बेकार हो।

0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए तीनों प्रत्याशियों को विधानसभा में आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ. सतीश पूनिया, डॉ. अलका सिंह और कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी को चुने जाने की घोषणा की। उन्होंने तीनों प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिए। राज्य में कल से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100% छूट दी जाएगी।
1: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देशित किया कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से नागरिकों को 22 प्रमुख विभागों की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इनमें खातों के विभाजन, नामांतरण और रास्ते संबंधी प्रकरण तथा अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून के दौरान संभावित बाढ़, जलभराव, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक और समन्वित तैयारियों पर जोर दिया गया है। आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी, समयबद्ध चेतावनी और प्रभावी समन्वय पर बल दिया। डॉ. मीणा ने 15 जून से राज्य और जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्षों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मॉनसून की नियमित निगरानी के लिए वेदर वॉच ग्रुप का भी गठन किया गया है। साथ ही डॉ. मीणा ने सभी बांधों, जलाशयों और एनीकटों की मरम्मत तथा रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के दौर के बीच आज से कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव की उम्मीद है। राज्य में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। 12 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। वहीं कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने के भी आसार हैं। बदले मौसमी तंत्र का असर 14 जून तक बना रह सकता है। अंधड़ और बरसात की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच कई शहरों में अधिक तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा गया। तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत में मिट्टी ढहने से 3 महिला श्रमिकों की मृत्यु हो गई। घटना वैशाली नगर इलाके में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियां केवल घरेलू कामकाज तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अहम योगदान देती हैं। अदालत ने कहा है कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित करना समाज में उनके योगदान को कम आंकना है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि घर की देखभाल और प्रबंधन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल के मंत्र के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलेवर में बदलाव का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, 2 सीटें भाजपा और 1 कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। और राज्य में कल से 15 जुलाई तक

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। जिले में 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत विभिन्न गतिविधियां और व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक, ग्राम पंचायत, निजी और राजकीय शिक्षण संस्थानों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, कारागृहों, पुलिस थानों, पर्यटन स्थलों, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर योग आयोजन किए जाने, योग संयम पोर्टल पर पंजीकरण कराने तथा योग के उपरांत फोटो अपलोड करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन को भी अब जंक्शन का दर्जा मिल गया है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित गंगापुर सिटी से दौसा मार्ग पर रेल यातायात सुचारू होने के बाद कोटा रेल मंडल प्रबंधन की ओर से ये घोषणा की गई। जिले में इन दिनों जनगणना का कार्य प्रगति पर है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से 33 प्रश्नों को पूछकर एचएलओ ऐप पर दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज की। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला। अभियान का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रभात फेरी, कलश यात्राएं, पीपल पूजन, जल पूजन, पौधरोपण, संकल्प, शपथ, श्रमदान और मैत्री फुटबॉल मैच जैसी अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं। विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली के साथ अभियान का समापन हुआ और इसी के साथ हरियालो राजस्थान अभियान का आगाज हुआ। अभियान के तहत इस मॉनसून सीजन में सघन वृक्षारोपण किया जाना है। इसके लिए लोगों को नर्सरियों से पौधे वितरित किए जा रहे हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बीते दिनों खुशखबरी मिली है। बाघिन T124 रिद्धि दो शावकों के साथ नजर आई है। नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों में और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर देखी गई। वहीं जिले के पालीघाट स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में दुर्लभतम घड़ियाल प्रजाति के नन्हे बच्चे अंडों से बाहर निकल रहे हैं। पालीघाट क्षेत्र में अब तक करीब 100 घड़ियाल हैचलिंग्स का सुरक्षित जन्म हुआ है। चंबल क्षेत्र में वन विभाग के प्रयासों की ये एक बहुत बड़ी सफलता है। जिले में इन दिनों मौसम का मिला जुला असर है। कभी तेज गर्मी तो कभी पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की और मध्यम बरसात का दौर चला। इसके साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि इससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर से गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। आगामी मॉनसून के मद्देनजर डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल के सदस्यों ने जिले के विभिन्न बांधों का निरीक्षण कर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से यातायात और सड़क सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन, फर्जी नंबर प्लेट, लाल नीली बत्ती, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, सायरन हूटर, नंबर प्लेटों के अनधिकृत शब्द चिन्ह और स्टिकर लगाकर पंजीयन चिन्ह की दृश्यता को प्रभावित करने, नियम विरुद्ध नंबर प्लेटों वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम कृषि महोत्सव 2026 के तहत करमोदा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में उर्वरकों के संतुलित उपयोग विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विभाग की ओर से आत्मा योजना के तहत फूल उत्कृष्टता केंद्र में पर्यावरण, जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती विषय पर कृषि संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देकर पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता का आह्वान किया गया। जिले में इन दिनों राजस्व विभाग की ओर से रास्ता खोलो अभियान के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में विभागीय अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में गैर मुमकिन रास्तों पर बरसों से किए गए अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले भर में अनेक स्थान पर सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटवाकर रास्ते खुलवाए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, दुनिया में उथल पुथल रा मौजूदा दौर में आई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो। जैसलमेर रा रामगढ़ माए 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर रो जयपुर रो उद्घाटन किन्नो। प्रदेश हूँ राज्यसभा चुनाव माए 3 ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनीचिया, 2 सीटा भाजपा और 1 कांग्रेस रा खाता माए। और राज्य माए काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि दुनिया माए अनिश्चितता रा मौजूदा दौर माई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। वे आज नई दिल्ली माए राखी जी नीति आयोग री गवर्निंग काउंसिल री मीटिंग माए बोल रिया हा। श्री मोदी कहो कि विकसित भारत बनावन ओड़ी बढ़ रिया देश माए केंद्र और राज्य सरकार ने भेड़ी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वे कहो कि राज्य बीच एक दूजा री मदद बातचीत और विचारान और लेन देन भेवनु चाहिए। मीटिंग माए चोखी भनाई लिखाई कौशल विकास और नौजवाना ने नौकरी धंधारा मौका मुहैया करावन माथे सरकार रो खास ध्यान भेवन री बात कही जी। ईसा गई महिलावारी अगुवाई माए विकास उद्यमिता खेतीबाड़ी और स्टार्टअप रबारा माए चर्चा करी जी। मीटिंग माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान रा विकास री सोच उपलब्धियां और कार्य योजना मारी जानकारी दीनी। सूचना और प्रसारण रेल और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर माए आकाशवाणी रा परिसरों जैसलमेर जिला रा रामगढ़ माए 20 किलोवाट बूता वाला FM रेडियो ट्रांसमीटर रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन किन्नो। इ मौके श्री वैष्णव सामरिक अवसंरचना माथे ध्यान देता थका आकाशवाणी और दूरदर्शन सरहदी हलका माए संचार व्यवस्था मजबूत करण सारू कहो। वे डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो।
2: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
1: केंद्रीय मंत्री प्रदेश माए न्यारा न्यारा रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रा कामा रोई जिक्र कीनो। वे कहो के NDA सरकार रेलना रा विकास सारू हर संभव कोशिश कर रही है।
2: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: कार्यक्रम में राज्य रा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुरी सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती रा अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी रा महानिदेशक राजीव कुमार जैन समेत कई आला अहलकार मौजूद रहा। ये पाछे श्री वैष्णव मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो दौरो कैरर वठे सेमीकंडक्टर क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI लैब विकसित करण रो ऐलान कीनो। वह विद्यार्थियों सागे बातचीत कर नवाचार तक

0: रहा हुक्म दीना। अरब मौसम, प्रदेश माए पड़ रही जोरदार गर्मी और उमस बीच आज कठे कठे मौसम माए बदलाव रा आसार है। 12 जिला माए आंधी बारिश सरु चेताईचियो है, जतका कठे कठे ओला पड़बारी संभावना है। 14 जून ताई अंधड़ और बरसात री संभावना ने ध्यान रखता थका जनता ने सावचेत रहवन री राय दी रिची है। ये बीच आज कई ठोड़ा पारो 40-46 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करीचियो। केंद्र सरकार सुरक्षा प्रणालियां और माली बुनियादी ढांचा में साइबर अपराधां रा बढ़ता खतरा सारू चेतायो है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र री ओर जारी चेतावनी रे मुजब साइबर धोखाधड़ी सारू डीप फेक वीडियो काम लिया जा रहा है, जहां नजरिए साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जॉब पोर्टल, डेंटिंग प्लेटफॉर्म और फोन नजरिए ठगी करे है। केंद्र सरकार एथेनॉल भेड़ और बनाई जा पेट्रोल माथा एक्साइज ड्यूटी माफ करती नहीं है। वित्त मंत्रालय कानून जारी अधिसूचना रे मुजब 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल भेड़ो करी जा पेट्रोल माथा एक्साइज ड्यूटी नहीं लागेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117-800 मत है 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो दुनिया माए उथल पुथल रा मौजूदा दौर माई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो। जैसलमेर रा रामगढ़ माए 20 kW FM ट्रांसमीटर रो जयपुर उद्घाटन कीनो। प्रदेशों राज्यसभा चुनाव माए 3 ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनी जिया, 2 सीटा भाजपा और 1 कांग्रेस रा खाता माए। और राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जयमाला में मैं हूँ विधि जैन, हृदय से आप सभी का स्वागत करती हूँ। फौजी भाइयों को विशेष प्रणाम करती हूँ और यह सुंदर सा गीत भारतीय सेना के नाम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: ओ चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: सेना।
1: भारतीय सेना के लिए इस प्यारे से वंदन गीत के साथ में आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम जयमाला की। पहला गीत हम ले रहे हैं मुकेश की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोलों के साथ, शंकर जयकिशन का संगीत है, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से।

हम सुन रहे थे ये गीत तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला में अगला गीत, जो कि है साथी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के हैं बोल और नौशाद का है संगीत।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है जयमाला। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला का अगला गीत, जो कि है फिल्म आया सावन झूमके से। लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी की हैं बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत।

हम सुन रहे थे प्यासा सावन फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला में एक और सुंदर सा गीत जो कि है सौदागर फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन का ही है संगीत।

0: एक नई खुशी।
1: जेडी लाए है भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, डीलवा, बूर्थल, हिंगोनिया, अटल योजना, वसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्यालय नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी क्लब, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141256996 पर।

हम सुन रहे थे ये गीत वापस फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है जयमाला।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

0: रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।
1: हम सुन रहे थे सिलसिला फिल्म का ये गीत अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर की आवाज़ में जावेद अख्तर के बोल और शिव हरी के संगीत के साथ। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम जयमाला। नमस्कार।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, बसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, आनंदपुरा, मनोहरपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी क्लब, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयर हाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: विविध भारती के साथ।

0: इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में।
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म निर्देशक इकबाल अली से। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता।
0: आज सुनिए दूसरा भाग।
1: कल के लिए अपना कोई प्रोग्राम तो बता।
0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ इकबाल अली साहब हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग तरह के काम किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनसे दिलचस्प बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत इकबाल अली साहब।
2: शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए राजेश हमाल जी एक नेपाल के आज के सुपरस्टार हैं वहाँ के।
0: अच्छा,
2: उनके विषय में भी एक दो शब्द आपको बता देता हूँ। क्षतीश जी करके एक थे, वो डायरेक्टर ही थे वहाँ के, काफी फेमस डायरेक्टर थे नेपाल के, सतीश कुमार सर
0: जी
2: अंधेरी में रहते थे। सतीश जी ने मुझे कॉल करके बुलाया। नेपाली फिल्म का नाम था गोपी किशन। तो उन्होंने बोला कि आपको पूरी फिल्म करनी है।
0: जी जी।
2: मैंने सर वो पूरी फिल्म की, राजेश हमाल जी की फर्स्ट फिल्म थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर वो फिल्म जो सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली हुई थी नेपाल में।
0: ओके।
2: और पहली फिल्म थी राजेश हमाल जी की, आज वहाँ के सुपरस्टार हैं। तो ऐसा मैंने सर बहुत सी फिल्में की और सीखता गया, अभी भी सीख ही रहा हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, उम्र भी होती जा रही है, सीखने में तो जीवन निकल जाएगा, पूरा जीवन में आदमी कभी पूरा हो नहीं सकता है।
0: जी जी।
2: तो मैं स्वतंत्र रूप से फिर मैंने सबसे पहले तो यूनियन ज्वाइन की, मेंबर बना मैं। के बाद में सर फिर मैंने स्वतंत्र रूप से निर्देशन के क्षेत्र में मैंने संघर्ष शुरू किया। तो एक प्रोड्यूसर थे, उनका नाम था अजय शाह, और उनके एक साथी थे हितेश शाह, अजय शाह हितेश शाह। ये दोनों महावीर सीरियल बना रहे थे।
0: जी जी।
2: भगवान महावीर, और उस दौर के अंदर काफी मतलब सीरियलों का दौर था, तो बड़ी बड़ी सीरियलें आ रही थी। तो किसी ने इनको सजेस्ट किया कि यार वो लड़का जो है ना इकबाल अली, उसको लो आप। पता नहीं किसी ने तारीफ कर दी कि मेरी।
0: जी जी।
2: तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये सीरियल बनानी है, मैथोलॉजिकल सीरियल है, भगवान महावीर के ऊपर है, और मुझे पहले इनके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा, मुझे इनके बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कहीं कोई मुझसे गलती ना हो जाए।
0: जी जी।
2: तो सर मैं तुरंत आपको हाँ नहीं बोल सकता हूँ। तो सर देखिए उनकी महानता, उन्होंने मुझे फुल हेल्प की, और मैंने 2 साल तक, मतलब ये समझ लीजिए कि मैं जैन हो गया, और 2 साल तक मैं मतलब बड़े बड़े गुरुओं से मिलता गया। हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो जैन थे दोनों, तो वो मुझे ले जाते थे, मैंने उनकी किताबें पढ़ी, महावीर पुराण पढ़ी। 2 साल तक मैंने सर बहुत मेहनत की, और ये 2 सालों में मैंने कोई काम नहीं किया, और मैं थोड़ा फाइनेंशियली परेशान तो होता था क्योंकि थोड़ा गरीब आदमी हूँ मैं भी, लेकिन एक शौक था मुझे, जुनून था मेरे अंदर कि नहीं मुझे अगर करना है तो करना है, और ईमानदारी से करना है, और आगे एक कामयाब निर्देशक बनना है, ये एक मेरे अंदर वो था।
0: जी।
2: तो सर मैंने भगवान महावीर सीरियल जो है, फिर हमने उमरगांव के अंदर वृंदावन स्टूडियो है जहाँ पर रामायण वगैरह की शूटिंग हुई थी, तो पटेल साहब का है, अभी तो उनका ध्यान हो गया, बहुत नेक इंसान थे। उमरगांव में हम गए, उमरगांव में हमने सेट वगैरह लगाया। सर पहले क्या था कि आप जानते होंगे कि पायलट एपिसोड बनते थे दूरदर्शन के लिए, कि भाई आप 4 पायलट बनाइए, वो पहले दीजिए, हाँ अप्रूवल होंगे, उसके बाद में फिर आपको वो मिलेगा टाइम वगैरह जो भी है, स्पॉन्सर वगैरह जो भी है। तो मैंने वो 4 एपिसोड मेहनत करके उस 4 एपिसोड को मैंने कंप्लीट किए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि वो 4 एपिसोड को बनाने के अंदर मुझे कम से कम 3-4 साल लग गए।
0: अरे बाप रे।
2: 3-4 साल इसलिए लगे कि मैं 3 साल तक तो अध्ययन ही करता रहा जैन धर्म के बारे में, भगवान महावीर के बारे में जानने की।
0: जी।
2: और उसके बाद में फिर साल भर तो मुझे मतलब उसको पिक्चराइजेशन करने में लग गया, क्योंकि कॉस्ट्यूम ड्रामा था, और उस टाइम बड़ा टफ मामला था सर, दूरदर्शन के ऊपर बड़ी बड़ी सीरियलें आ रही थी उस टाइप की, और न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी चर्चे, मुझे काम भी तो फिर उस हिसाब से करना था, और मेरा तो मतलब सब कुछ था इसके ऊपर ही दारोमदार था। तो मैंने सर वो बहुत खूबसूरती से मैंने वो 4 एपिसोड बनाए, लेकिन वहाँ भी नसीब ने साथ नहीं दिया, कुछ प्रोड्यूसर को आपस में कुछ उनका था मामला, कुछ जमा नहीं, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया।
0: ओहो,
2: बहुत बड़ा धक्का लगा, मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, और मैंने मेरा पूरा समय मेरा इसमें गया, खैर होता है जिंदगी के अंदर। फिर संघर्ष में लग गया सर, संघर्ष करता रहा, फिर अब मुझे अब तो जागो फिल्म मेरी वो मैंने कंप्लीट की, मतलब ये सोच लीजिए कि मैंने कम से कम 20-25 फिल्में मेरी शुरू हुई होगी, कुछ मुहूर्त हुआ, कुछ 2-4-5 रील बनी, कुछ 10-15 दिन की शूटिंग हुई, कुछ ये हुई, लेकिन मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, हमेशा प्रोड्यूसर की तरफ से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते थे, और पिक्चरें बंद हो जाती थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम बोलिए, कहीं प्रोड्यूसर का ध्यान हो गया, कहीं कुछ हो गया, बड़े मसले हुए मेरे साथ में।
0: जी जी।
2: हाँ, बहुत संघर्ष मेरी लाइफ में रहा सर। तो उसके बाद में अब तो जागो मैंने एक फिल्म बनाई, मैंने ईश्वर से अल्लाह से ये प्रार्थना किया सबसे पहले कि मालिक अब ऐसा कुछ मत होने देना इस फिल्म को तो कंप्लीट करवा दे। तो सर वो मेरी फिल्म कंप्लीट हुई, मैंने राजस्थान में शूट किया
0: जी।
2: उसके अंदर तो सर ऐसा हुआ कि जो दो हमारे जो प्रोड्यूसर थे, एक अनिल चेलानी साहब और एक विजय शर्मा साहब, बहुत नेक इंसान है, वो दोनों जो कलाकार थे, थिएटर के आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि इकबाल जी हम इसमें एक्टिंग करेंगे। तो हमने ठीक है सर कोई बात नहीं, एक कहानी लिख देते हैं, एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, आप बताइए आपको किस टाइप का आइडिया आपका है। उन्होंने बताया इस टाइप का है, हमने उस पर काम शुरू कर दिया, वो फिल्म हमने कंप्लीट कर दी सर, और बहुत बेहतरीन हमारी फिल्म बनी वो। लेकिन सब नए आर्टिस्ट थे, पैरा कोई फेमस था नहीं फिल्म के अंदर, आप तो जानते हैं कि पोस्टर के ऊपर जो है वो कम से कम, अगर फिल्म का पोस्टर लगता है सिनेमा हॉल के बाहर तो उसमें कम से कम कुछ चर्चित चेहरे तो होने चाहिए ना
0: जी जी।
2: तो उस हिसाब से शायद हम उस पिक्चर में भी सही ढंग से सफल नहीं हो पाए। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा उस फिल्म के बारे में, देखिए ईरोस कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, बड़ी बड़ी फिल्में चाहे वो शाहरुख साहब की हो, चाहे वो अजय देवगन साहब की हो या सलमान भाई की हो, बड़ी बड़ी फिल्में जो है वो करते हैं, अपना एक OTT प्लेटफॉर्म बनाया, तो उसने मेरी फिल्म को ही सजेस्ट किया
0: जी जी,
2: और मेरी फिल्म को ले लिया उन्होंने, और अब तो जागो को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज किया ईरोस ने,
0: बिल्कुल।
2: तो ये एक मेरे लिए कामयाबी वाली बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए।
0: इसके बाद आपने क्या किया?
2: इसके बाद एक शॉर्ट मूवी बनाई, वो मुंबई एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, मुंबई इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो उसके बाद में मेरी उम्र भर की एक मेरी एक वो थी, बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला
0: जी जी
2: 2022 में। उसके बाद में फिर मैंने एक मूवी और बनाई, शॉर्ट मूवी। अब मैं थोड़ा सा, मतलब क्या है कि मैं अपने आप को ये करने के लिए, मैं भाई काम तो काम है
0: जी जी जी।
2: फिर उसके बाद में मैंने देवता बनाई सर, देखिए वो देवता भी जो है मेरी चले गई खजुराहो इंटरनेशनल के अंदर, उसको भी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिल गया
0: जी जी।
2: उसके बाद में सर मैंने अभी फिलहाल मैंने 5 एपिसोड आखिर कौन वेब सीरीज, बहुत प्यारी वेब सीरीज है, और उसके साथ आमिर खान साहब एक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उस फिल्म के अंदर, हम लोगों ने वो बहुत प्यारी वेब सीरीज, सस्पेंस वेब सीरीज है, तो वो बन चुकी है, बस अभी हम OTT पे बहुत जल्दी आएगी, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, और अभी तो मेरे काफ़ी प्रोड्यूसरों से मीटिंग चल रही है, और काफ़ी मतलब प्रोजेक्ट हैं मेरे हाथ में, बस अब वो कंप्लीट होंगे उसके बाद में फिर देखेंगे क्या होता है।
0: बिल्कुल
2: सर, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ
0: जी, बताइए।
2: वो ये है कि मैंने तो संघर्ष किया
0: जी,
2: 35 वर्ष संघर्ष किया, संघर्ष क्या होता है ये मुझे पता है। तो सर मैंने एक अपना चैनल बनाया,
0: अच्छा,
2: वन टेक,
0: ओके,
2: और उसमें मैंने ये सोचा कि जो संघर्षशील लोग हैं, जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं,
0: यस,
2: उनकी प्रतिभाओं को जो मैं लोगों के सामने लाऊं, तो सर मैं उसमें बहुत कामयाब

0: हो गया तकरीबन, आज समझ लीजिए कि 10 एपिसोड उसके मैंने कंप्लीट कर दिए हैं।
1: जी जी।
0: उसमें मैंने फिरोज बॉस करके फाइट मास्टर है, काफी फेमस फाइट मास्टर है और बहुत नेक इंसान है, मैंने सबसे पहले उनका एक प्रोग्राम बनाया, उसके ऊपर उनकी प्रतिभाएं बताई, उसके अंदर उनका इंटरव्यू लिया। देखिए ये तो एक ऊपर वाले की देन होती है, आदमी अगर सच्चे दिल से अगर मेहनत करता है, लगन करता है, तो ईश्वर उसको जरूर कामयाब करता है। तो कुछ ऐसा हुआ कि फिर से मुंबई जो फेस्टिवल था, वो फेस्टिवल के अंदर उस एपिसोड को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया।
1: अरे वाह,
0: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। फिर मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा हो गई और मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैं अभी मतलब मेरा एक प्रोग्राम आता है जो मैं नई प्रतिभाएं हैं, जो हमारे भारतवर्ष में, भारत देश के अंदर जो प्रतिभाशाली लोग हैं और जिनकी प्रतिभाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनका प्रोग्राम बनाऊं, दर्शकों तक मैं वो पहुंचाऊं। तो मैं ये काम भी करता हूं और निःशुल्क करता हूं सर, और मैं उसमें कामयाब भी हूं और ईश्वर चाहेगा तो आगे भी कामयाबी मिलेगी।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आप आए और अपने सफर के बारे में आपने अच्छी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में आने का।
0: धन्यवाद।
2: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले को

दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता। आशिक का तेरे क्या होगा अंजाम तो बता। ओ लाल दुपट्टे।

0: फिल्म निर्देशक इकबाल अली से बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। इनसे बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। अंगना में बाबा द्वारे पे मां। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले।
1: कैसे आए गौरी हम तोहरे घर मां।
0: प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अनंत।
1: हेलो नीरजा, आज कैसे भूल पड़ी?
0: भूलती ही कब हूँ, हर पल तो आके तुम्हें ही खोजा करती है। न जाने तुम्हारी सांवली सलोनी सूरत में कैसा आकर्षण है कि सांसों की बंसी तुम्हारे ही नाम को तैरती रहती है।
1: बस बहने लगी ना भावलोक में।
0: सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत रिंग खरीदी है, देखो। सुनो, आज शाम पिक्चर देखने चलोगे?
1: मेरा आज तो आर्ट्स फैकल्टी में लेक्चर है।
2: ओ डार्लिंग, तुम तो हर समय व्यस्त रहते हो, मेरा जरा भी ख्याल नहीं। मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचती हूँ, कितने सपने सजाती हूँ, पर तुम पर कोई असर नहीं होता। The pain of loving you is almost more than I can bear.
1: मुझे देर हो रही है, तुम्हें कोई खास बात करनी है?
0: कहने को तो बहुत कुछ है ना, कल रात मैंने एक सपना देखा, तुम गुलाब का एक फूल लाए हो और चुपके से मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। कहने लगे, नीरजा ये फूल तुम्हारे बालों में लगा दूं? सच, उस समय मैं कितनी खुश थी, जैसे फूल पत्ती के प्रेम पर जिंदा रहता है ना, बस ऐसे ही मैं तुम्हारी। काश ये सपना असली होता।
1: सपना वही देखते हैं जो अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाते।
0: गलत, जो जिसे प्रेम करता है वही उसका सपना देखता है।
1: ये जानते हुए भी तुम मुझसे प्रेम करते हो?
0: ये भी कोई पूछने की बात है?
1: तुम्हें गलत फहमी।
0: मुझे वो भी प्रिय है क्योंकि वो तुम्हारी ही दी हुई है।
1: ये तुम्हारे अनुराग की चरम सीमा है नीरजा, जो सत्य को जानते हुए भी तुम अनंत की ओर बढ़ रही हो।
0: क्या करूं, अनंत पद कामी जो ठहरी।
1: तुम्हें समझाना मुश्किल है।
0: एक बात मानोगे?
1: क्या?
0: कल शाम हमारे कॉलेज के सालाना जलसे में मेरा डांस का प्रोग्राम है, आओगे ना?
1: कल तो मैं बहुत बिजी हूँ।
2: प्लीज, कैसे भी आइए।
1: देखो मैं मजबूर हूँ। ओके, फिर मिलेंगे।
2: निष्ठुर। अरे हाय, सुनिए तो आनंद जी, दिल तोड़ दिया बिचारी का। दर्शन के प्यासे दो लोचन, बिन देखे अकुलाते, हर सिंगार के फूल से सपने पलछिन में मुरझाते।
0: देख झरना, मुझे तंग मत कर, मेरा दिल पहले ही बहुत दुखी है,
2: इसीलिए तो कहती हूँ प्रीत किए दुख होए।
0: दुख हो या सुख, मुझे अनंत से प्रेम है।
2: बस जब देखो अनंत अनंत अनंत, इसका कोई अंत भी है? जब उसे तेरी कोई चिंता नहीं तो तू उसके लिए क्यों इतनी व्याकुल रहती है? नहीं मानता तो सब्स्टिट्यूट कर दो।
0: कब तक नहीं मानेगा, मैं इंतजार कर सकती हूँ।
3: अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो?
0: ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने प्रेम पर भरोसा है। मैं अपनी पूजा भक्ति और लगन से उसे जीत लूंगी। अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है तो उसे एक दिन बदलना ही पड़ेगा।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहला प्रेम है ना, पर ज्यादा भरोसा मत करना।
0: तू नहीं जानती झरना, पहला प्रेम गले में बंधी उस घंटी की तरह होता है जो बस हर समय कानों में बजती ही रहती।
3: तुम घंटी बजाओ और वेटर को बुलाओ।
0: अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम कुछ लोगी?
3: कुछ नहीं, बस मुझे घर तक लिफ्ट दे देना।
0: अच्छा आओ चले।
4: नीरा जी।
0: कौन है?
4: वही आपका रोमियो।
0: ओ, आप क्या कहना चाहते हैं?
4: कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर यह कमबख्त दिल कुछ धड़कता सा है। सच तो यह है कि जब आपसे बातें करता हूँ तो सब कुछ फूल सा जाता हूँ और कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ।
0: मिस्टर रूप, मालूम होता है आजकल आप बहुत फिल्में देखने लगे हैं।
4: करेक्ट, पर ये मेरे दिल की फिल्म है जिसे सिर्फ आप ही अपने मन की आंखों से देख सकती हैं। आप ही मेरे सपनों को साकार कर सकती हैं। क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं है?
0: मित्रता का अर्थ प्रेम नहीं होता मिस्टर रूप, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं कुछ हद तक आपको पसंद भी करती हूँ, पर प्रेम नहीं।
4: पसंद और प्रेम दोनों में थोड़ा ही फासला होता है। पसंद का दूसरा नाम ही कशिश है और जहाँ कशिश है वहीं मोहब्बत है।
0: ये आपका फलसफा हो सकता है
4: मगर सच
0: नहीं, एकदम गलत। मुझे आपसे प्रेम नहीं है।
4: कल शाम मिलोगी? नहीं,
0: मेरा डांस का प्रोग्राम है। सॉरी, अब आप जा सकते हैं।
4: हाय, किस बुत की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ।

0: हेलो नीरजा,
1: तुम यहाँ भी?
0: जहाँ तुम वहाँ हम।
1: मेरा ख्याल छोड़ दो,
0: मैं तो बधाई देने आया हूँ।
1: किस बात की?
0: नृत्य की सफलता पर।
1: ओह धन्यवाद।
0: सुनिए, ये कुछ फूल आपके लिए लाया था।
1: ओह, मुझे देर हो रही है, चलो धरना। कुछ भी हो, रूप है दिलचस्प आदमी। तुझे बहुत पसंद है तो तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? अगर वो मुझे इतना चाहता जितना तुम्हें चाहता है तो जरूर कर लेती। क्या कमी है उसमें? हर बात में A1 है। A1 हो या टॉप ग्रेड, मुझे तनिक पसंद नहीं। मुझे तो उससे नफरत है।
2: चलो नफरत ही सही, कुछ तो है तुम्हारे दिल में उसके लिए। बेचारा कितने अरमान रखता है।
1: देख झरना, अगर तुझे रूप की तारीफ करनी है ना तो पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ, अनंत के घर बाद में जाऊँगी।
2: अच्छा भाई, चुप हो गई। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कौन करे?
1: मैं मगर हूँ।
2: यू सिली गर्ल।
1: लो वो आ गया तुम्हारे चहेते का बंगला। रामू
3: जी,
1: अनंत बाबू हैं?
3: जी नहीं, और वो तो पिक्चर देखने गए।
1: अकेले?
3: जी नहीं, साथ में एक थी।
1: थी? नाम?
3: नाम तो मालूम नहीं, पर
1: ठीक है। अनंत जी आए तो कहना मैं आई थी।
3: जी अच्छा।
1: ओह झरना, अब तुम गाड़ी ड्राइव करो, मेरा तो मूड एकदम ऑफ हो गया है।
2: और कहीं गाड़ी का मूड ऑफ हो गया तो
1: फिर मजाक।
2: वो तो मेरी आदत है। सच, तुम तो जरा सी बात पे नाराज हो जाती हो। अनंत से फोन करके पूछ लेना क्या बात है, हो सकता है नौकर को सही बात ना मालूम हो।
1: प्लीज झरना ड्राइव कर, मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। अनंत, ये तुमने क्या किया? मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरा प्रेम क्षण भर में ठुकरा दिया। तुम नहीं जानते अनंत, नारी जीवन में सिर्फ एक पुरुष को ही प्रेम करती है, उसी को अपना इष्ट, अपना देवता मानती है। मैंने संपूर्ण निष्ठा से तुम्हें चाहा, तो समझ में नहीं आता कि तुम उससे क्यों रूठ गए, क्यों रूठ गए। शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो मैं तुम्हें नहीं पा सकी। पाना या न पाना तो भाग्य की बात है, पर तुम्हें बुला देना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं।

0: नीरजा।
1: हेलो।
0: तुम अभी घर आई थी?
1: हाँ।
0: कोई खास बात?
1: वही तो मुझे पूछनी है।
0: कौन सी बात?
1: वही जो तुम बताना नहीं चाहते।
0: ऐसी तो कोई बात नहीं।
1: पिक्चर किसके साथ गई थी?
0: तो ये बात है।
1: कौन है वो लड़की?
0: मेरी मंगेतर।
1: तो मैं क्या थी अब तक?
0: एक मित्र।
1: तुमने मुझे धोखा दिया।
0: गलत।
1: तुम विश्वासघाती हो।
0: ये तुम्हारा भ्रम है।
1: सत्य को भ्रम कहते हो?
0: नहीं, भ्रम है तुम्हारा। मैं पहले भी तुम्हारा एक मित्र था और आज भी एक मित्र हूं।
1: ठीक है, पर तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, मुझे अंधेरे में क्यों रखा?
0: तुम कल्पना के पंखों पर उड़ती रही तो मैं क्या करता? मैंने कई बार तुम्हारी उपेक्षा भी की, पर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही। इसमें मेरा क्या दोष है?
1: तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया। आखिर आखिर मुझमें क्या कमी थी जो तुमने मुझे से शादी नहीं की?
0: जानना चाहती हो?
1: हाँ।
0: तुम अति आधुनिक और स्वच्छंद हो। पति को सिर्फ तुम एक बैनर समझती हो। मुझे घर से प्यार करने वाली पत्नी चाहिए नीरजा, फैशन की गुड़िया या मॉडल नहीं।
1: गलत है आनंद, गलत है। आई एम होम लविंग।
0: फिर तुम्हारा रूप से भी प्रेम है। राकेश के साथ भी मैंने तुम्हें कई बार घूमते देखा है।
1: वो तो सिर्फ मेरा एक मित्र है और कुछ भी नहीं।
0: मित्र है तो तुम्हारे चक्कर क्यों काटता है? तुम भी तो बहुत घुल मिल कर बातें करती हो उससे।
1: तुम्हें भ्रम है आनंद, भ्रम है। अगर मैंने किसी को चाहा है तो सिर्फ तुम्हें।
0: ये तुम्हारा ढोंग है।
1: चाहे दुनिया से सच्चाई उठ गई है, वरना तुम कभी ऐसा नहीं कहते।
0: दुख का राग अलापने से सुख नहीं मिलता नीरजा। जीवन की राहें बहुत लंबी हैं। मैं तो चाहता हूं कि तुम किसी अच्छे युवक से विवाह कर लो और मुझे भूल जाओ सदा के लिए।
1: ये तुम कह रहे हो आनंद, तुम कह रहे हो। मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी।
0: सुनो तो नीरजा, नीरजा।

0: ओ नीरजा, आप और मेरे यहाँ, यकीन नहीं होता कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा।
1: जी नहीं, ये हकीकत है। तुम मुझे बहुत चाहते हो नरूप।
0: जी
1: मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उपेक्षा की, अपमान किया।
0: लेकिन
1: काश मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मैं कभी तुम्हारा दिल ना दुखाती।
0: कुछ मेरी बात भी तो सुनिए।
1: मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। उस दिन कॉलेज के सालाना जलसे में तुम मुझे फूल देने आए थे और मैं ठुकरा कर चली गई थी। मुझे माफ कर दो रूप।
0: बस करो नीरजा, तुम कहना क्या चाहती हो।
1: मुझे तुमसे हमदर्दी है।
0: बस
1: मैं तुमसे प्रेम करती हूँ।
0: बस
1: मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
0: काश ये इरादा तुमने पहले कर लिया होता। अब बहुत देर हो चुकी है और मैं एक दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी मिस नीरजा। अरे सुनिए सुनिए तो, मेरी शादी का कार्ड तो लेती जाइए।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देवदर्शन।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

हम सुन रहे थे ये गीत यंगिस्तान फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। कौशर मुनीर ने इसे लिखा और जीत गांगुली ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: हम सुन रहे थे पीके फिल्म का यह गीत, शान और श्रेया घोषाल ने इसे गाया, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा और शांतनु मोइत्रा ने इसे संगीतबद्ध किया। सुनते हैं ये संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक, और चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत, जो कि है फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम अलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर के बोलों के साथ, अनु मलिक के संगीत के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए है भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोज विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, वसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुल।

Roughly Hour with its refrain. It's refrain. हम सुन रहे थे यू मी और हम फिल्म का यह गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में. मुन्ना धीमान ने इसे लिखा और विशाल भारद्वाज ने इसे संगीतबद्ध किया है. आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम चित्रलोक का यह अंतिम गीत.

हम सुन रहे थे स्वदेश फिल्म का यह गीत एआर रहमान की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल और एआर रहमान के संगीत के साथ। कार्यक्रम चित्रलोक यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों

0: के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशारानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपके लिए। मैं आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ, जिसे लिया गया है गजल फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, मदन मोहन का है संगीत।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से यह गीत। जगजीत सिंह की आवाज़ में कैफी आज़मी के बोल और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया, एक नगमा आपके नाम किया। चलिए चलते हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में अगले नगमे की ओर, जो कि है बाजार फिल्म से। लता मंगेशकर, तलत अजीज़ की आवाज़ें हैं, मखदूम मोहिद्दीन के बोल हैं और खयाम का संगीत।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से तलत अजीज़ की आवाज़ में शहरयार के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस गज़ल को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए मैं आज की अंतिम गज़ल। मासूम फिल्म से है और अनूप घोषाल की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं और आर डी वर्मन का है संगीत।

0: छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान।
1: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम आपके लिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मेरा जन्म भी बम्बई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद ही इज़ ऑल्सो प्लेबैक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूज़िक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौड़ एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौड़ ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस एक गौला टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी रादर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, ज़िद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रूप कुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबा जी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और कौन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित श्यामता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला। उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौर को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो

0: देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं विविध भारती छाए गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत के तराने रात गुनगुनाती है और दिल में उम्मीदों के चिराग मुसलसल जलते हैं। दुनिया के नज़ारे, ये चांद ये सितारे, उसे एक नज़र में समाए लगते हैं, जिनके बगैर सब कुछ बेजार सा लगता है। जब वो आ जाएं तो मौसम बहार आ जाए, कलियों में शोखी, फूलों पे निखार आ जाए।

वो शाम का ढलना, वो रात का इंतजार, गुनगुनाते नजारों में जुगनुओं की कतारें, चांद की मध्यम चांदनी में वो इजहार मोहब्बत, वो शोखी वो कयामत, बातों ही बातों में क्या बात हो गई, पलकें क्या झुकी, किस्से हर रात हो गई।

भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के बाकी नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

संस्कृत भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। महफिल में आज उनका ही चर्चा है, हर नजर को ठहरा गए, एक हल्की सी मुस्कुराहट पे अरमान मचल जाते हैं, इस कदर छाए हैं बादलों में जैसे बूंदों का आशियां, खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे रात कुछ सोच रही हो। सच कहूं तो ऐसी सादगी का क्या कहना, उस नाज का क्या कहना, उस नाजनी का क्या कहना।

खफा होना भी क्या कयामत है, देखते तो इधर ही हैं। वो तेरी नजर का निशाना खाली जाता नहीं, प्यार उनसे भला किस तरह छुपाएं। साज दिल पे एक तरह ना दिल ने छेड़ा है, चांदनी रात में ये फसाना दिल ने छेड़ा है।

उछलती घटाओं की गुलाबी रंगत, प्यारे वो पल जब बादे सबा ने कुछ कहा। दिल कहता है आपके प्यार की दास्तान ये सुनाती हैं, कुछ तूफान दिल में मचलते हैं, ये आपका जाना और जाकर फिर लौट आना। तो बंदिशों के दरवाजे मोहब्बत में रहने दो, कुछ दिल की कहो, कुछ कुछ दिल में ही रहने दो।

0: संगीत में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति।

0: लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनिए
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में

0: गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा समाप्त होती है। कल सवेरे 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।